FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 26 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप विविध भारती से हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके तुरंत बाद होगा वंदनवार कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे साथ।

0: एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान

0: 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

भूल यदि हो जाए तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। छह बजकर 35 मिनट पर यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187। छह बजकर 45 मिनट पर और शाम को पुनः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर। 12 के अंतर्गत सुबह 10 बजे सुनिएगा सेल्यूलाइट के सितारे। अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे विचार आपके इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की, और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8 बजे कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8 बजे रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिक। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात। और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे खसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सब

के संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले बात आज के प्रसारणों की।

आज सुबह आप सुनेंगे 7 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अंग्रेजी समाचार होंगे 7:05 पर। हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:10 पर। सुप्रभात, आकाशवाणी के ही हिसार केंद्र से आप सुनेंगे 7:40 पर यह कार्यक्रम। 8 बजे समाचार प्रभात होगा। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। 8:30 से सुनेगा विविध भारती के प्रसारण। 9 बजे भारत की गूंज और 9:30 आज के फनकार। आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आज हम 10 बजे हमेशा की तरह आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग होगा। 12 बजे यादों की महफिल। हिंदी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर। विविध भारती की गीतमाला 1:10 पर। 2 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार होंगे। 2:15 पर हिंदी समाचार आप सुनेंगे। 2:30 बजे सुनिएगा विविध भारती से सदाबहार नगमे फिल्मी गीत। दोपहर 3 बजे विविध भारती से ही सखी सहेली सुनिएगा। 4 बजे प्रसारित होगा विविध भारती से आज के मेहमान कार्यक्रम। आज शाम 5 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सदाबहार गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे ओल्ड इज गोल्ड। छह बजे हिंदी समाचार होंगे। 6:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर होंगे। भक्ति संगीत आप सुनेंगे 6:20 पर। साढ़े 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग। 7 बजे होगा कार्यक्रम खेती किसाना सिद्धि। 7:30 बजे प्रसारित करेंगे म्हारे गांव कार्यक्रम। 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:30 बजे सुनेगा हरियाणा के गलियारे से। 8:45 पर हिंदी समाचार होंगे। 9 बजे अंग्रेजी समाचार होंगे। 9:15 पर विविध भारती से सुनिएगा आपके लिए चित्रलोक कार्यक्रम। 10 बजे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, ये फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। और 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

कल की सभा का आगाज होगा 5:55 पर। 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार विविध भारती से और वंदनवार कार्यक्रम 6:05 पर होगा। कार्यक्रम रूपरेखा आप सुनेंगे 6:45 पर। संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:55 पर होंगे। 7 बजे अंग्रेजी समाचार, 7 बजे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे। आकाशवाणी के हिसार केंद्र से 7:10 पर आप सुनेंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग। 7:40 पर सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित होगा। 8 बजे सुनेगा समाचार प्रभात। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार। 8:30 बजे विविध भारती के प्रसारण आप सुनेंगे। 9 बजे सुनेगा विविध भारती से ही भारत के गूंज और 9:30 बजे आज के फनकार।

कल सुबह 10 बजे नमस्ते हिसार कार्यक्रम प्रसारित होगा आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग सुनिएगा। 12 बजे यादों की महफिल। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:10 पर विविध भारती की गीतमाला आप सुनेंगे। 2 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। 2:15 पर हिंदी समाचार होंगे। 2:30 बजे विविध भारती से सुनिएगा सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली और 4 बजे सैनिकों के नाम संदेश।

कल शाम 5 बजे सुनिएगा कार्यक्रम थारी मारी पसंद, 6 बजे हिंदी समाचार कार्यक्रम रूपरेखा 6:05 पर, प्रादेशिक समाचार 6:10 पर होंगे, भक्ति संगीत 6:20 पर प्रसारित होगा, 6:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग आप सुनेंगे, 7 बजे होगा किसान वाणी कार्यक्रम और 7:30 बजे आप सुनेंगे हमारे गांव, 8 बजे सुनेगा व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, राष्ट्रीय हिंदी समाचार 8:45 पर होंगे, 9 बजे अंग्रेजी समाचार होंगे, 9:15 पर विविध भारती से आप सुनेंगे आपके लिए, 10 बजे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।
1: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है, और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
2: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
0: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर,
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम पर।
3: अर्ज किया है, राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया, राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया, और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
0: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
1: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर।
0: आप भी भेजिए अपनी मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में,
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे,
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे और उसके तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पानी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नई सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह

0: कि जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the sub-divisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kazhagam. S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the Assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs

0: नई सुबह नए सवेरे के संग आकाशवाणी सार सुबह 7:10 पे कार्यक्रम लोक रंग। आज के लोक रंग कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी गीत संगीत के साथ। हरियाणा की संस्कृति व प्रकृति बहुत धनाढ्य है। हरियाणवी लोक कला अभिनय गीत संगीत बात और जज्बात आप सबके साथ। मारे रीति रिवाज लोक गीत नाच गाने बढ़िया खान पान यह तो हरियाणा की पहचान।
1: आज के हमारे कलाकार हैं गुलाब सिंह खांडेवाल।

0: हरियाणवी लोक रंग हर रोज सुबह 7:10 पे प्रसारित करा जाए।
1: गड़ी बैठ

0: भैया ने राम राम।
1: नया बेहतर है
2: क्योंकि तुम ही हो,
3: किंतु पुराना बेहतरीन।
4: दिल चीज़ क्या है?
1: नया श्रेष्ठ है
2: केसरिया तेरा,
3: किंतु पुराना श्रेष्ठता।
1: नया उत्कृष्ट है
2: तेरी गलियां,
3: किंतु पुराना अनमोल।
4: चुरा लिया है तुमने जो दिल था।
1: नया अनूठा है
3: किंतु पुराना अनुपम।
1: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
3: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
1: हर बुधवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
2: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
1: क्या आप खुश हैं?
4: आज मैं ऊपर।
3: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
5: पापा के नगमे नूजे कर दे।
1: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
2: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
3: या आप प्यार में हैं?
2: पहला पहला प्यार है।
1: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
2: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
3: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
1: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
3: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: अभी आप सुन रहे थे लोक रंग कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं सुप्रभात, कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। सुबह की प्यारी और सुहानी बेला में आप सभी का दिल से स्वागत है। नई सुबह अपने साथ नई उम्मीद, नई ऊर्जा और भगवान का सुंदर आशीर्वाद लेकर आई है। उगते सूरज की किरणें हमें ये संदेश देती हैं कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, एक नई शुरुआत हमेशा हमारा इंतजार करती है। तो आइए आज की इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं भक्ति, अच्छे विचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक। श्रोताओं आज अगर मौसम की बात करें तो दिन की शुरुआत हल्की गर्मी से हुई थी, पर सूर्योदय के बाद से ही मौसम बदल गया। बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग ने 13 और 14 मई को येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी के आसार हैं।

और अब आज का सुविचार। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी फायदे की उम्मीद नहीं होती। आजकल लोग अक्सर रिश्ते मतलब से निभाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करे और सबको सम्मान दे। इंसान की अच्छाई उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानी जाती है। और श्रोताओं, अब वो पावन समय आ गया है जब पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबने वाला है। श्री रामचरितमानस का पाठ सिर्फ शब्दों का पाठ नहीं है, ये मन को शांति देने वाला, जीवन को सही रास्ता दिखाने वाला और भगवान श्री राम से जोड़ने वाला एक सुंदर माध्यम है। जब मानस की चौपाइयां गूंजती हैं तो मन शांत हो जाता है और दिल में भक्ति जाग उठती है। तो आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए

भावपूर्ण तरीके से श्री रामचरितमानस पाठ का आनंद लेते हैं। पुने पुने प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरहु पानी बोलें गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। अर्थात बार बार शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदातप भारी तुम कृपाल सब संसव हरेऊ राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। अर्थात आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयौ विषादा सुखी भयौ प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपन किंकर जानी जदपि सहज जड़ नारी आयानी। अर्थात हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर स्वीकार करें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जौमो पर प्रसन्न प्रभु अहू राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नरतनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहउ वृष केतु उमा बचन सुनी परम बिनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर उन्होंने कहा, हिय हर्षे कामारि तब संकर सहज सुजान बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपा निधान। अर्थात तब कामदेव के शत्रु स्वभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले,

0: देश के हर कोने से आती है ये आवाज। हेलो, आपके दिल के धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन? जी हाँ, हेलो के साथ आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे कि तो नंबर है 01662297827। क्या कहा? किस वक्त करें फोन? रिकॉर्डिंग का समय है हर शुक्रवार दिन में 11 से 11:30 बजे और प्रसारण होगा हर शुक्रवार और रविवार शाम 5 बजे। रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप सुना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, उसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शनिवार और सोमवार रात 10 बजे। तो हर शुक्रवार रहिए तैयार अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें है आपके हेलो का इंतजार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका सुप्रभात कार्यक्रम में। एक समय था जब कुछ ऐसे हरियाणवी शब्द हमारे आम बोलचाल में बोले जाते थे और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज भागदौड़ भरी जिंदगी में ये शब्द कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। हरियाणवी सिर्फ एक बोली नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे बुजुर्गों की सीख और हमारी पहचान है। इन शब्दों में अपनापन है, सादगी है और रिश्तों की गर्माहट है। तो आइए आज जिक्र करते हैं कुछ ऐसे ही हरियाणवी शब्दों का जो शायद कहीं पीछे छूट रहे हैं। पहला शब्द है पड़छत्ती। इसका अर्थ होता है घर के भीतर बना एक छोटा सा मचान या अटारी। ये लकड़ी या पक्के निर्माण से बनी छत के ठीक नीचे कमरे के एक हिस्से में बनाई गई एक संकरी छत होती थी और इसका उपयोग कम इस्तेमाल होने वाले सामान, अनाज या चारपाई रखने के लिए किया जाता था। अगला शब्द है कढ़ावणी। इसका अर्थ होता है चूल्हे की धीमी आंच पर दूध गर्म करने या रबड़ी बनाने के लिए रखा जाने वाला बड़ा बर्तन या मटका, जिसमें धीरे धीरे धीमी आंच पर दूध उबलता था। अगला शब्द है आड़ू। जिद्दी या हठी स्वभाव का व्यक्ति जो किसी की बात को भी आसानी से ना माने। अगला हरियाणवी शब्द है ओरना। बिजाई या बुआई के काम आने वाले

एक ऐसा उपकरण जो बांस और लकड़ी से बना होता था और खेती के काम आता था। अगला शब्द है सान्नी, पशुओं को खिलाए जाने वाला मिश्रण जिसमें हरा चारा, खड़ और बिनोला मिलाते थे। और अंतिम हरियाणवी शब्द है बांकड़ी, नमक डालकर उबाले गए चनों को कहते हैं और ये बच्चों और बड़ों के बीच एक बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन है जो सभी बहुत ही शौक से खाते थे। तो आइए आज के सुप्रभात के साथ हम संकल्प लें कि अपनी मीठी हरियाणवी बोली को जिंदा रखेंगे, बोलेंगे भी और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे भी, क्योंकि भाषा जब तक बोली जाती है तब तक जिंदा रहती है।

श्रोताओं, इसे खूबसूरत सुबह की दहलीज पर हम आपके लिए छोड़ जाते हैं कुछ पल ठहरने का सुकून, कुछ शब्द सोच में डूब जाने के लिए और कुछ एहसास जो दिन भर आपके साथ चलें, क्योंकि हर सुबह सिर्फ समय नहीं बदलती, सोच बदलने का भी मौका देती है। हर किरण हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, उजाले को रास्ता मिल ही जाता है। तो आज के सुबह को अपने भीतर उतार लीजिए, मुस्कान को अपना कवच बनाइए और विश्वास को अपनी ताकत। दिन आपका हो, इरादे आपके हों और हर कदम पर जिंदगी आपको खुशियों की ओर ले जाए, इसी कामना के साथ इस सुबह को यहीं विराम देते हैं, लेकिन उम्मीदों को नहीं। आप मुस्कुराते रहें, महकते रहें। सुप्रभात।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर है। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में

0: जी, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ, और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम चित्रलोक। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। पहला गीत सलाम नमस्ते, इस फिल्म से कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जयदीप साहनी का लिखा गीत, संगीत विशाल शेखर का।
1: एक जानिया अज है कल फिर उड़ जानिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की सलाम नमस्ते फिल्म के इस गीत के साथ। कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेड 2 फिल्म से जुबिन नौटियाल का गाया गीत, मनोज मुंतशिर पूर्णम अलाहाबादी नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत, रोचक कोहली नुसरत फतेह अली खान संगीतकार हैं।

दम लगा के हईशा इस फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा।

0: दमलका की हईशा फिल्म से कुमार सानू और साधना सगम की आवाजों में आपने ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जावेद अख्तर का लिखा, शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा, सोनू निगम अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं।

सोनू निगम, अलका याग्निक और विष्णु राय दास का गाया गीत कभी अलविदा ना कहना फिल्म से अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गीत, अमित मिश्रा, अनुष्का मंजिंदा, अंतरा मित्रा का गाया गीत। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और धुन बनाई है प्रीतम ने।

ये गीत था फिल्म दिलवाले से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। निलेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई, और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम। देवीश्री प्रसाद का संगीत है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

0: आँखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के।
1: कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुड़ी नौटियाली नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, मत किया ये गीत।

जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणा को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो बताओ, मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो है आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचा नहीं सकता।

हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूं या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूं, ये आपको बताने आया हूं। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

है दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

मनहर उदास जाने माने गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

जाने के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

बात में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं। हम तो

0: दोस्तों हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मजहर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए। और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। आज की ये सुबह आपके नाम, उस शहर के नाम दोस्तों, जहां सूरज खेतों के ऊपर नहीं लोगों की उम्मीदों के बीच उगता है, जहां चौपालों की हंसी अब भी रिश्तों को जिंदा रखती है और जहां की मिट्टी में आज भी अपनापन सांस लेता है। ये एक शहर नहीं, एक एहसास है, थकी हुई जिंदगी को सुकून देने वाली वो ठंडी हवा जो कानों में धीरे से कहती है घर आ गए। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में बातें होंगी अपने शहर की, अपने लोगों की, उन धड़कनों की जो हर रोज हिसार को और जिंदा बनाते हैं। स्वागत है आपका नमस्ते हिसार में, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशल। दोस्तों, हर गली कुछ कहती है, हर सड़क कोई कहानी सुनाती है और हर दिन अपने साथ लाती है कुछ नई हलचलें, कुछ नए रंग। तो चलिए महसूस करते हैं अपने शहर की धड़कनों को और जानते हैं कि हिसार और आसपास की खास खबरें क्या हैं जो आज लोगों की बातों में हैं, चाय की चुस्कियों में हैं और दिलों के करीब हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड के 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से घोषित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में हिसार जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकायों में प्रदेश में 105 विद्यार्थी टॉप 10 में रहे हैं, जिनमें से जिले के 15 लड़कियों ने उत्कृष्ट अंक हासिल कर न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस बार जिले का परिणाम 88.44% रहा, जो कि बीते साल से 0.38% कम रहा, जबकि 2022 से 0.62%, 2023 में 2.37% और 2024 में 0.67% परिणाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह है कि राज्य स्तर पर हिसार जिले के मतलौडा स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मंजू ने विज्ञान संकाय में कुल 500 में से 492 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सभी सफल विद्यार्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।

दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में जनगणना करने का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। जनगणना के कार्य में अध्यापकों को लगाया गया है। जिन कर्मचारियों ने समय पर अपने कार्य को पूरा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारनौल ब्लॉक में 2 ट्रेनर और 36 सुपरवाइजर इस कार्य के सुपरविजन कर रहे हैं। जनगणना के कार्य करने में अलग अलग गांवों में कर्मचारी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का काम काफी धीमा चल रहा है। इसको लेकर नायब तहसीलदार ने सभी सुपरवाइजर्स की एक मीटिंग ली है। मीटिंग में साफ आदेश दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी अपने काम को समय पर पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी कर्मचारी फील्ड में जाते हैं उनको वहां पर कोई समस्या होती है तो तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन इस कार्य को 25 मई से पहले सभी को पूरा करना होगा। दोस्तों ये थे हिसार आसपास में आज की खबरें। बने रहिए प्रोग्राम में और बहुत कुछ है आपके लिए।

0: आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दादी कौन सा प्लांट है
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
3: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
1: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
3: क्यों
1: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी
3: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया ये रे तेरी समझदारी का फल
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो

0: hastanenize bulunuyor mu?
1: Piercing?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नमस्ते हिसार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है, और स्वागत है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि इसमें आप हमारे साथ शामिल होते हैं। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, कभी कभी ठहर कर अपने दिमाग को मुस्कुराने का मौका देना भी जरूरी होता है, मानते हैं ना आप? तो अब वक्त है थोड़ी मस्ती का, थोड़ी चुनौती का, जहां सवाल होंगे दिलचस्प और जवाब देंगे आप। मोबाइल अपने पास रखिए, व्हाट्सएप खोलिए और तैयार हो जाइए आज के ज्ञान के इस खूबसूरत खेल में हिस्सा लेने के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और इनके जवाब आपको देने होते हैं। जो सही जवाब हमारे श्रोता साथी भेजते हैं उनके नाम हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और सही जवाब देने वाले को एक अपना मनपसंद गीत भी भेजना होता है, और जो सबसे तेज जवाब देता है उन्हीं के पसंद का गाना हम अपने कार्यक्रम में चलाते हैं। तो आप हो गए होंगे तैयार? चलिए एक बार आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से बता देते हैं, वैसे तो आपके पास होता है, फिर भी नोट कर लीजिए। 9729253272, 9729253272। अब हमारे सवाल ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, ऐसी कौन सी अभिनेत्री थी जो हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुई और जिन्हें टुनटुन के नाम से जाना गया, उनका असली नाम क्या था? सवाल एक बार फिर से, ऐसी कौन सी अभिनेत्री थी जो हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुई और जिन्हें टुनटुन के नाम से जाना गया, उनका असली नाम क्या था? और दूसरा सवाल है कि अभी हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, आप जानते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी सरकार बदली है, वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो इन दोनों सवालों के सही जवाब आप फटाफट लिख भेजिए हमें, हम इंतजार कर रहे हैं। अपनी पसंद का गीत जरूर लिखिएगा।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपनी मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
3: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
4: आज मैं ऊपर।
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
5: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
1: या आप प्यार में हैं?
6: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
7: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
8: दादी, कौन सा प्लांट है?
9: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
10: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
8: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
10: क्यों?
8: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
10: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
11: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार, सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 MHz पर।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका नमस्ते हिसार में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और जैसा कि हमने आपसे सवाल पूछे थे और आपके जवाब आने शुरू हो गए हमारे व्हाट्सएप पर, लेकिन अभी हम कुछ और श्रोताओं के जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, कुछ लोग भीड़ में चलकर खो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से रास्ते बना जाते हैं। आज हम बात करेंगे हिसार की मिट्टी से उठी एक ऐसी शख्सियत की जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें जी कर दिखाया। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच बदल दे और दिल में एक नई उम्मीद जगा दे। ये कहानी है मास्टर महीपाल शर्मा की।

मिशनरी स्कूल शिक्षक पंडित महीपाल शर्मा की कहानी। उनका जन्म 8 नवंबर 1907 को राजस्थान के कहरी गांव में हुआ था। जूनियर स्थानीय भाषा शिक्षक के रूप में उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा संचालित हिसार जिले के विभिन्न ग्रामीण विद्यालयों में अपनी सेवाएं दी। ये विद्यालय महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी और भारत के धर्मभक्त लाला हरदेव सहाय के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से चल रहे थे। 1935 में लाला हरदेव सहाय के निकट संपर्क में आने के बाद पंडित महीपाल शर्मा ने राजली, चारवाला, बडोपाल, सातरोड, मीरका, रावतखेड़ा, गुजर, हरिकोट, चिंदर, रतेरा, इसरवाल और तलवंडी जैसे विभिन्न गांवों के विद्यालयों में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। इन गांवों के लोकप्रिय शिक्षक होने के साथ साथ मास्टर महीपाल शर्मा ने कुछ विद्यालयों को खुलवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कुछ प्रसिद्ध छात्रों में चौधरी मणिराम गोदारा, वासुदेव अग्रवाल, ये सब शामिल हैं। दूसरे, जब 29 नवंबर 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाजपत राय शिल्पा पाठशाला सातरोड गए तो मास्टर महीपाल शर्मा ने उनके स्वागत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्टर महीपाल शर्मा विद्या प्रचारिणी विद्यालयों के एक विशिष्ट शिक्षक थे, जिन्होंने 22 वर्षों तक यानी 1935 से 1957 तक समर्पित रूप से सेवा की। जब 1957 में इन विद्यालयों को पंजाब सरकार ने अपने अधीन ले लिया, तब उन्होंने 1966 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सरकारी शिक्षक के रूप में काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद मास्टर महीपाल शर्मा हरियाणा के सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों के संघ के महासचिव बने। संघ के प्रयासों के कारण ही शिक्षकों को पेंशन मिलनी शुरू हुई। 13 अप्रैल 1969 को मास्टर महीपाल शर्मा ने स्वयं हिसार के जवाहर नगर में वेद मिडिल स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं इसमें अपनी सेवाएं दी। श्रोताओं, अपने जीवन के अंतिम दिन यानी 5 सितंबर 1983 तक, जो कि शिक्षक दिवस है, वो इसके प्रधानाचार्य रहे। ये एक संयोग ही है कि जीवन भर एक सच्चे शिक्षक रहे महीपाल शर्मा का निधन भी शिक्षक दिवस पर हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके कार्य, उनके व्यक्तित्व की छाप हमेशा हमारे आसपास रहेगी और हमें प्रेरित करती रहेगी।

श्रोताओं, आपका इंतजार हुआ खत्म और अब हम बताने वाले हैं आपको सही जवाब जो हमने आपसे पूछे थे। पहला जवाब जो हमने पूछा था कि ऐसी कौन सी अभिनेत्री थी जो हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुई और जिन्हें टुनटुन का नाम दिया गया था, और उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था उमा देवी। इन्होंने एक ही फिल्म में गीत गाया था और वो बहुत ही हिट रहा था गीत, जिसके बोल थे अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आपने ज़रूर सुना होगा। और जो दूसरा सवाल था कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है वहाँ मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो उसका सही जवाब है शुभेंदु अधिकारी जी ने। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुछ ने गलत जवाब भेजे हैं, कुछ ने सिर्फ एक सवाल का जवाब सही भेजा है, और कुछ हमारे श्रोता हैं जिन्होंने दोनों सवालों के जवाब सही भेजे हैं, तो हम उनके नाम पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो पहला जवाब आया है उमेश सांगवान का, गांव पैंतावास कला, तहसील और जिला चरखी दादरी से, इन्होंने दोनों जवाब जो है बिल्कुल सही भेजे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा जवाब भेजा है वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण ने, गांव जेवरा हिसार से, इनके भी दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको वीरेंद्र भ्याण जी। तीसरा जवाब भेजा है सुंदर नगर हिसार से मयूर गुर्जर, पंकज गुर्जर, शिवम गुर्जर, प्राची गुर्जर, नैन्सी गुर्जर, सुलेख गुर्जर, सुरेश गुर्जर ने, इनके भी दोनों जो जवाब हैं वो बिल्कुल सही हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और जो ये जवाब अंत में, या जो कहें कि सबसे पहले जवाब जिन्होंने भेजा है जो हम सबसे अंत में पढ़ते हैं, ये भेजा है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसे से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांश

जी अवाना उजे सवाना अनाया अवाना गुरदीप अवाना बेबी कीरत अवाना ने इन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है, सही जवाब भेजा है और इसीलिए हम अपने वादे के मुताबिक इनकी पसंद का ये गीत चला रहे हैं जो इन्होंने सुना चाहा है फिल्म फकीरा से।

दोस्तों, दुनिया जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनते ही आंखों में चमक ले आती हैं और होठों पर बस एक ही शब्द आता है, वाह। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब अगले सेगमेंट में खुलने वाला है रोचक तथ्यों का वो पिटारा जहां हर बात आपको हैरान करेगी और मुस्कुराने पर मजबूर भी।

दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जिनका रहस्य आज तक बना हुआ है। उनके बारे में अनेकों शोध हुए पर सच्चाई कोई नहीं जानता। वृंदावन का एक मंदिर अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान कृष्ण रात में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखें तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका है। जी हाँ, इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आए हैं, लेकिन रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वो तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, महाभारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वो बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वो अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रामाणिक आज तक कुछ भी नहीं मिला है।

दोस्तों, कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत माना जाता है, यहाँ अच्छी आत्माएं ही रह सकती हैं। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। कैलाश पर्वत चार महान नदियों के स्रोतों से घिरा है, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली या घाघरा। और दो सरोवर इसके आधार हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। ये पर्वत मानव निर्मित एक विशाल काय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। यहाँ यति यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। इसका वास कहते हैं हिमालय में होता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक और चलते चलते हम आपसे कुछ और साझा करना चाहते हैं। 1970 और 80 के दशक के एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक और भजन गायक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और गुजराती फिल्मों में गाने गाए हैं, उनका नाम है मनहर उदास और आज है उनका जन्मदिन। 13 मई 1943 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई आए और कल्याण जी आनंद जी के साथ काम करने लगे। मशहूर गजल गायक पंकज उधास के बड़े भाई मनहर उधास ने 450 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दी है और बहुत ही खूबसूरत वक्त उन्होंने बिताया है फिल्म इंडस्ट्री में। 1969 की फिल्म विश्वास का गाना आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, हीरो और तेजाब जैसी फिल्मों के लिए यादगार गाने गाए। हिंदी और गुजराती के अलावा उन्होंने पंजाबी और बंगाली में भी गाना गाया है। अपने भाई पंकज उधास की तरह वो गजल गायकी में भी प्रसिद्ध है। मनहर उधास ने अपने करियर में मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों के दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आज उनके जन्मदिवस पर हमारी तरफ से उन्हें बहुत सारी बधाई और आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके दिल के किसी कोने को छू गया होगा। अब इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अपने शहर से मोहब्बत बनाए रखिए, लोगों से रिश्ते बनाए रखिए, क्योंकि यही रिश्ते जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। एक नई सुबह, नई बातें और नए एहसासों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते हिसार में।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते हिसार, या आकाशवाणी का हिसार केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आपसे थोड़ी ही देर में सुनिए विविध भारती के प्रसारण।

0: साजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे ये गीत।

द मॉर्निंग सन इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और उनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रामन रमानी का संगीत था सूजी दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है, और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिड़ी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेय घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वितरी कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: राम लखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोज दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनोरदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास की आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में है। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनन उदास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मनु रदास, कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना, कंचन मनरदास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनरदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनरदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोचकर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहां पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है सौ अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाजा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही धरे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में पूरी सुरक्षा के बीच नगर निकाय चुनाव के लिए पड़े मतों की गिनती जारी है। अभी तक अधिकतर जगह पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अंबाला नगर निगम में महापौर पद के लिए भी भाजपा प्रत्याशी अक्षिता सैनी 21,358 मतों से चुनाव जीत गई हैं। उन्हें कुल 52,794 वोट मिले हैं। इस बीच पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 6, 8 और 9 और 10 के सदस्य के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। वार्ड नंबर 6 से भाजपा के पार्थ गुप्ता 866 मतों से विजयी हुए। वार्ड नंबर 8 से भाजपा के राजकुमार जैन ने 948 मतों से और वार्ड नंबर 9 से भाजपा के हरेंद्र मलिक ने 1623 मतों से चुनाव जीत लिया है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा के शेखर विजयी हुए हैं। उकलाना नगर पालिका में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार निकिता गोयल को हराया। सोनीपत नगर निगम में सदस्य पद के लिए चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। वार्ड 1 से कांग्रेस के जय कुमार खत्री 270 वोट से जीत गए हैं। जय कुमार खत्री ने 3240 वोट हासिल कर भाजपा के निवर्तमान पार्षद हरिप्रकाश सैनी को 270 वोट से हराया। भाजपा प्रत्याशी हरिप्रकाश सैनी को 2970 व निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट मनीष सैनी को 2840 वोट मिले। वार्ड नंबर 2 से भाजपा के मुकेश ने जीत दर्ज की। मुकेश ने 3405 वोट हासिल कर पूर्व पार्षद सुरेंद्र नैयर को 1532 वोट से हराकर जीत हासिल की। सुरेंद्र नैयर ने 1873 व कांग्रेस प्रत्याशी पवन ने 1576 वोट हासिल किए। वार्ड 3 से बीजेपी के सुरेंद्र मदान ने 3732 वोट हासिल कर कांग्रेस के अनुज छाबड़ा को 1081 वोट से हराकर जीत हासिल की। अनुज छाबड़ा को 2651 वोट मिले थे। सोनीपत नगर निगम से राजीव जैन 23,247 वोट से महापौर पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के कमल दीवान को हराया है। पंचकुला में नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए 8वें राउंड के परिणाम में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 14,894 वोट से आगे हैं। भाजपा के श्यामलाल बंसल को अब तक 25,598 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 10,704 वोट मिले हैं। राजेश कुमार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1426 वोट के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं अभी तक नोटा को भी 550 वोट मिले हैं। सांपला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 687 वोट से जीत हासिल की। प्रवीण कोच को 4,391 वोट जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अंकित ओहलरान को 3,704 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा भी 6,200 वोटों से जीत गए हैं। भाजपा के अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले जबकि बाबूलाल लांबा को मिले 3,156 वोट और वे दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सदर बाजार चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखने और नीकलसन सड़क का नाम महाराणा प्रताप सड़क करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद अंबाला सदर के कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए उन्होंने आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी। श्री विज द्वारा 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के दिन सदर बाजार चौक पर महाराणा प्रताप की 12.5 फुट ऊंची और 16 क्विंटल वजनी मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। निस्वार्थ रूप से मरीजों की सेवा व मातृत्व भाव से मरीजों का इलाज करने के उद्देश्य से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को कल अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भिवानी के सामान्य अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर लगाकर नर्सिंग अधिकारियों को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने नर्सिंग दिवस मनाए जाने के पीछे के इतिहास की विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM एंड 102.3 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर से आनंद लीजिए विविध भारती के प्रसारणों का।
2: को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं या गाते झूमते नाचते अपने उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहां जवाब महका गाता झूमती सपना रचना जाने कहानी सहारा बेसहारा जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कहने कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा अनजानी बहती झूमती गाती जैसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता। भाई इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार, तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उछाल लिए हैं। तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: हो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली, करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: से ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आपको लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हो और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहते हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए, तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है, हमें वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते ही नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत, ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कहने कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये उन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कहने कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चले और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वही हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोअर 100K लिखे हैं, यानी 1 लाख फॉलोअर हैं, 1 लाख हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी, माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो मां से लिपटकर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है। पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हो और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगह है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं इस गीत में।

0: ये मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भाग कर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती है कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वही हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

बोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना। यही हमारे सवाल का सही जवाब था और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहां है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: लो कसम इससे हाथ न लगाएंगे,
1: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे।
0: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो

0: टूटी सारी तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे। अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: तो साथियों अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजय आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूहू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

मेरा नाम चिंग चिंग चू।

मेरा नाम खिंचिंचू।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

फोन हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें। साहिल लुधियानवी की बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी तो बताया भी जाएगा।
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने पहले कुछ तुम्हारा था
0: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते हैं तुम अपनी मुझे दे दो मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे पहले हम विषय बता
1: देते हैं। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली ऐसे बनाए और तुरंत खाए बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर
0: जी जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में। यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
1: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना।
0: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
1: आप मेंटेन है ना।
0: ये वही तो बात है
1: इसलिए हमें संतुलन रखना है।
0: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है। वही तो जीवन उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद है।
0: संतुलन जरूरी है।
1: संतुलन बहुत जरूरी है और गीतों का भी तो आनंद है ना। तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं
0: जी। तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना। तो कश्मीर चले? बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद बेज काला पीला और नीला है। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
2: अब जैसे प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी सफेद लाल नीला हरा पीला गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है।

0: इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती है। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी, क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
0: और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी की जा सकती है। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारे यही कारण कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन
1: बहुत स्वस्थ रहते थे, काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग समझो घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोड़ना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम
0: करते सारे काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, तो इतने आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी कि हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, पायल बजने लगती है। तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है। सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। तो बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते सुना लिए, हम पढ़ लेते कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर, हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात। हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण लोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी। और हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपुरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के

0: एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए, यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हमने बता रहे हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजीली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है, इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ही दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको तो अच्छा लगा होगा। तो देख दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
0: ना, इसलिए मजा आता है जिसको लगा मैं दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो कोई वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, जो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी

0: आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौती का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन हुए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, न कि केवल अहंकार। ही अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब।
1: और हम एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी। तो हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो आसानी होता है। बिल्कुल, तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जूह बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री उन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: मैंने खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, और आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा क्यों मिला,
0: दाबेली कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता
1: है।
0: और आप गीत सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले डॉक्टर कितना भी मना कर दे लेकिन ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए चाहे आप लखनऊ चले जाइए चाहे आप गुजरात आ जाइए चाहे महाराष्ट्र आ जाइए राजस्थान चले जाइए और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
0: और खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंत्री वर्मा का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर, जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबा खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर है जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी, जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
2: इस यात्रा का तो कोई भारत में खासतौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
3: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी है?
2: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो से सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों में इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे,
3: जिनकी
2: आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था, मतलब, और वो पॉपुलैरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है,
3: हाँ।
2: तो जानते ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है, रेडियो सिंगर होना
3: जी,
2: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी मेरे शुरू हुआ था
3: जी जी।
2: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं ये कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूं कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक तो अगर कहना ही क्या
3: जी।
2: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सजता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
3: जी,
2: और न सिर्फ आऊंगा
3: बल्कि हेड करेंगे
2: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
3: वाह वाह वाह,
2: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर
3: का। बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो मुझे जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
2: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, तो एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
3: बिल्कुल,
2: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
2: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
3: गंगा प्रसाद जी,
2: हाँ हाँ, तो ये सब जिसको मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
3: जी,
2: और
3: जी,
2: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
3: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
2: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपने पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
3: हम एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
2: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल वो है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट सेंटर ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का
3: बिल्कुल ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
2: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
3: ओके
2: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
3: जी।
2: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
3: क्या
2: इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
3: बिल्कुल
2: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
3: जी,
2: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
3: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहां से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहां पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छे ऑडियंस भी आती है वहां पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
3: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
2: अनुराधा।
3: बहुत
2: अच्छा, बहुत अच्छा
3: ये गाना सुन,
2: पसंदीदा गाना है
3: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते थे।
0: हाँ, वो टूरिस्ट मैप पर था।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर नौरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे। ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी, और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात। तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, जय भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कहीं लता जी है, कहीं आशा जी है, कहीं रवि है, कहीं मुकेश है, कहीं मुन्ना डे है, तो ये सब चलता है। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: था, खुद गाते थे।
1: तो वो घर वाले भी बार बार, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको धुन भी बनाने लगा, और बाकायदे परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में, पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, तो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से
0: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी।
1: एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई, और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी।
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरिडा है उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई, और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर, ये मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ, और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा, जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हा हा हा,
1: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो, और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमें जयपुर में देख चुके हैं।
0: वाह वाह,
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हाँ हा।
1: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
0: वाह,
1: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया, और खूब प्रसन्न किया, और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे, और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा,
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
0: उस दौरान में जब आप
1: तो, तो हमसे काफी से तो, लेकिन उनकी एमआर रोड से पांच बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल,
1: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल,
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ,
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए निस्सार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत, जयपुर मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा में भी मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: इनका हवा महल,
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे। ये
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रेल सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा,
1: और आज भी शायद वही होगा
0: जी,
1: कि अजमेर सिर्फ रेल सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है
0: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था,

0: पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कपूरचंद कुलू साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे, मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में मैं तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पर पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी
1: जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए सब मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जैसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलवाला था उस वक्त गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: याद है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो तो मेरे काफी पढ़ाई दौड़दार
1: जी,
0: तरन्नुम में सुनाओ उसको।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में मुश्किल

0: मुश्किलों का मेला है। और नवगीत का शुरू हुआ था तो ये अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से,
1: हाफती हवाओं से क्या बात है,
0: बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से, कब तलक टेगी ये जिंदगी दुआओं से, कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं से, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला है,
1: कामना ने ठेला है, क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला रहे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तक हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सोचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी।
1: देखिए बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए, क्योंकि हमने बचपन में आगे
0: बढ़ने सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया। उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत कि आज इसने क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घर में,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत जो है
0: रोज आ रही है,
1: हर मतलब हर दूसरे दिन, हर दिन जो है आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी,
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करें।
1: तो ये एक अच्छा बचपन भी था, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे
1: घर में वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके, पर आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। हाँ। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे उन्होंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है, और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती है?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
0: बिल्कुल
1: की कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने

0: इनकी बहुत अच्छी याद है, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं। हाँ, एकता बचपन क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है उनके नाम ये गाना है।
0: जी जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निजी मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनके विरेक गुरु तो वह देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके
0: साथ बैठता था। गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंचीय नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी। मैं हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें किताबों को नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: सारे अखबार आते थे। मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं तो दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी,
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था। तो ये सब चीजें जो संस्कार में, और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में। तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया। मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरू

0: लोगों को, हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है।

0: बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
1: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
0: जी,
1: गजल की विधा को मैंने
0: अपने शिफ्ट किया है।
1: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मेरे कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठते और एक दूसरे को सुनना सुना। तो उन्होंने जो ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बोले, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
0: जी,
1: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
0: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
1: तो खुद तो
0: मुश्किल भी है।
1: हाँ,
0: मुश्किल
1: मुश्किल है, तो उसको निभा ले जाना और उसको, तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
0: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
1: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
0: आपकी धुन
1: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी, वो ये गजल।
0: स्वागत है।
1: यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स।
0: खास शेर हो, स्वागत।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
0: जरूर सर।
1: ये बच्चे वाला जो शेर है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिला
0: जी,
1: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
0: बिल्कुल।
1: बहुत हो गया, अब नहीं रहा, अब नहीं
0: जी,
1: बहुत हो गया
0: जी,
1: है ना, ये आता है
0: सबके साथ, सबके साथ।
1: अरे पति खरा पति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
0: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी,
1: तो हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
0: वाह।
1: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते फिर रहते हम लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है।
0: वाह।
1: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है।
0: क्या बात है सर, हम बहुत खुशनसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आपसे ये सुन रहे हैं।
1: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
0: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे

0: तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये गाना पूरा सुनते हैं।

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी हिसार है।

आपका प्यार, आपका इंतजार और ये है आप सबका ख्वाब। आकाशवाणी हिसार, FM बैंड 102.3 MHz पर।

श्रोताओं, पेशी खिदमत है कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड यानी सदाबहार हिंदी फिल्मी नगमे, और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ आज मैं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, स्वागत है आपका ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम में। आज श्रोताओं, हम कुछ ऐसे गीत आपको सुनवाएंगे जो मुलाकातों का जिक्र करते हैं, और हिंदी फिल्मी गीतों में मुलाकात शब्द का जिक्र बहुत बार होता है, और ये मुलाकातें ऐसी होती हैं जो किसी के जहन में ताउम्र बस जाती हैं, क्योंकि कुछ मुलाकातें इतनी खास होती हैं कि वो अपनी एक हसी

अहम याद किसी के दिल में छोड़कर चली जाती हैं, और वो मुलाकात ही क्या जो याद ना रह सके। और ऐसी मुलाकातों का हर लम्हा यादगार होता है। कहने वाले और लिखने वाले तो ये भी कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात तो बहुत जरूरी है। वो प्यारी सी शाम, वो हसीं तेरी बात, बड़ी याद आती है मुझे तुझसे तेरी हर मुलाकात। और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली मुलाकात में जरा खुलकर नहीं मिलते, तो इसीलिए पहली मुलाकात में मायूस होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली मुलाकात अपना असर हमारे दिलो दिमाग हमारी जिंदगी पर छोड़कर जाती है कुछ इस तरह।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

पहली मुलाकात थी और हम दोनों ही बेबस थे, ना वो अपनी जुल्फे संभाल पाए और ना हम अपने आप को। दोस्तों, आज हम उन गीतों को आपको सुनवाने जा रहे हैं या सुनवा रहे हैं जिन पर मुलाकातों की हकीकत सही में फिट होती है। दोस्तों, जब भी हम किसी शख्स की तस्वीर पहली बार देखते हैं तो जहन में एक बात जरूर आती है कि ये देखने में ना जाने कैसा होगा, कैसे बातें करता होगा, कैसे चलता होगा और कैसा दिखता होगा। यानी जब तक मुलाकात ना हो जाए तब तक वो बात अधूरी रहती है, यानी मुलाकात के बगैर बात बनती कभी नहीं है। और जब मुलाकात पहली बार हो और उसके बारे में जानकारी भी हो तो फिर मन में थोड़ी सी उलझन या हलचल तो होती ही है कि जिनसे मिलना है उनसे मुलाकात यादगार भी होगी कि या नहीं होगी।

सोचा तो था आज की मुलाकात में बहुत सी बातें होंगी, सोचा तो था आज की मुलाकात में बहुत सी बातें होंगी, मगर कमबख्त जबान खामोश रही और आंखें बस वो ही बोलती रहीं। दोस्तों, मुलाकात तो वही हसीन होती है जहां दिल और सोच दोनों मिल जाते हैं। हर मुलाकात कुछ खट्टे कुछ मीठे एहसास जरूर छोड़कर जाती है, लेकिन जो मुलाकातें हसीन होती हैं फिर वही तो यादगार बनती हैं। मोहब्बत की मिसालें वही मुलाकातें बनती हैं और इन मुलाकातों के लिए तो बहाने भी कम पड़ जाते हैं, यानी कि बार बार मिलने के बहाने बनाने पड़ते हैं।

मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, एक मुलाकात तो बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि दूसरा जो हमें चाहता है, लगता तो ऐसा ही है कि वो हमारे बारे में जो लिखता है, सोचता है, वो भाव उसकी अपनी आंखों में है भी कि नहीं। और ये बात तो तभी पता चलेगी जब उनसे हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि आंखें सब सच सच बयां कर देती हैं और उस हकीकत को बयां कर देती हैं जो सीधे दिल को छू लेती है सामने वाले की। कई बार पहली मुलाकात इतनी मन भावन होती है कि उस शख्स से बार बार, हर बार मिलने को मन करता है और कहता है कि रुक जाइए, अभी ना जाइए, कि अभी दिल भरा नहीं। ऐसी मुलाकातें ताउम्र का बंधन लेकर आती हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत ओल्ड इज गोल्ड सारिका शर्मा के साथ FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी से मुलाकात के लिए हमारा दिल बेचैन रहता हो। ये तो किसी किसी के बारे में ही हम कह सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, और जब उनसे मिलने का मौका आने को होता है तो मन इस संदेह से घिर जाता है कि ये मुलाकात हमें सुकून से भर देगी या फिर आखिरी होगी। फिर कई बार तो हम उन राहों को भी बदल देते हैं जो उन तक पहुंचती हैं, लेकिन जिन्हें मिलना होता है वो तो मिलकर ही रहते हैं। उनके बीच कोई दूसरा तो क्या, वो खुद भी नहीं आ सकते, क्योंकि दिल अपने महबूब के बारे में इतना सोचता है कि उन्हें अपने महबूब में कोई कमी नजर नहीं आती। बस वो उनसे मिलने की तमन्ना करता है, इतना तो जरूर करता है।

फूल सा खिलता हुआ चेहरा तेरा देखकर हम यूं ही खो गए। वो पहली मुलाकात थी और हम प्यार में पागल हो गए।

0: सरकारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं कुछ ऐसे दिलकश नगमे जो मुलाकातों का जिक्र करते हैं और उनकी हकीकत बयान करते हैं। कहते हैं, पूरी दुनिया के जज्बात एक तरफ, तुमसे वो पहली मुलाकात एक तरफ। दोस्तों, जो दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं वो कभी वीरान नहीं रहते, वो हमेशा आबाद रहते हैं रोशनी से प्यार की। सच्चा प्यार पूरी शिद्दत के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देता है। ऐसे लोगों को अपने प्यार पर न केवल विश्वास होता है बल्कि वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना बड़ी शिद्दत से करते हैं।

एक मुलाकात का मौका देकर तुम मेरे दिन को रोशन कर दो। दोस्तों, मुलाकातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो किसी को बड़े करीब से रूह से जानने का मौका मिलता है। वादे और सपने तो टूट जाते हैं, लेकिन ये जो किसी से मुलाकात है, ये हमारी आत्मा को ये एहसास करा देती है कि हमसे मिलने वाला हर मुश्किल घड़ी में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उनसे मिलकर हम इतना तो जान जाते हैं कि उनके जज्बातों में हमारा वजूद क्या मायने रखता है।

0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।
2: पधारो
0: ये आवाज है अनेकता में एकता की।
3: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
4: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
5: ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, खुद खुदा ढूंढ के देता है वो शख्स जो दिल को सुकून दे। दोस्तों, किसी भी मुलाकात का ये उसूल होता है कि मिलने के बाद हम कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हकीकत ये है कि जिनकी बातें, जिनके अंदाज हमारे दिल को छू लेते हैं, उनसे हम दिल से कहते हैं कि आपसे मिलना, आपसे बातें करना हमें खुशी देता है, हमें सुकून देता है, हमें अच्छा लगता है। जैसे कि दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है, क्योंकि ये मोहब्बत की डोर से बंधा है और ये डोर कच्ची नहीं, बहुत मजबूत है। हाँ, है तो नाजुक सी, पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज कहना चाहेंगे कि आज की मुलाकात बस इतनी, क्योंकि अगली बार मिलने के लिए एक बार जाना तो पड़ता ही है, और आप हमें बुलाएं और हम ना आएं, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लीजिए दोस्तों, अब इस मुलाकात का अंतिम गीत।

श्रोताओं, ओल्ड इज गोल्ड सदाबहार हिंदी फिल्मी गीत आप सुन रहे थे अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए हिंदी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, प्रतीक्षा के बस चंदपल और हमारे साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। पहले आज की शेष आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओ, आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत, और 6:30 पर आप सुन सकते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम

खेती किसाना सेती आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे और हमारे गांव का समय रहेगा 7:30। श्रोताओं 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑर्गन्स इंडिया।

फिल्म संगीत के तहत आप सुनेंगे बेशकीमती फिल्मी नगमे आज रात 8 बजे। हरियाणा के गलियारे से आप सुनेंगे 8:30 पर। व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आप सुन सकते हैं आज रात 10 बजे। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर। लोकरंग आप सुनेंगे 7:10 पर और सुप्रभात आप सुन सकते हैं 7:40 पर। नमस्ते हिसार का समय रहेगा कल प्रातः 10 बजे। और इसी बीच 1:05 पर रिले होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। थारी मारी पसंद आप सुनेंगे ये कार्यक्रम कल शाम 5 बजे। और श्रोताओं, कल शाम 6:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम और 6:30 पर आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे और 7:30 पर आप सुन सकते हैं महारे गांव। व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आप सुनेंगे कल रात 8 बजे। श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, अब गुमशुदा के बारे में एक सूचना। ये महिला है पारुल और इनकी उम्र 32 साल है। कद 5 फुट 2 इंच है। रंग गेहुआ है, गोल चेहरा है और ये 1 मई 2026 को सुबह 8:30 पर जींद से लापता है। अगर इनके बारे में कोई भी सूचना किसी को मिलती है तो इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। नंबर है 8814011512। सूचना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी हिसार है FM बैंड 102.3 MHz पर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार जीते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव की जीत को भाजपा में जनता का विश्वास और जन केंद्रित नीतियों की जीत बताया। हिसार जिले के उकलाना जिले पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी विजय रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। पंचकुला क्षेत्र का परिणाम 85.73% रहा। और अंबाला पुलिस ने शाहबाद लाडवा रोड से एक मोटर यार्ड में खड़ी गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव के परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता के विश्वास और जन केंद्रित नीतियों की जीत बताया है। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों का केंद्र और राज्य सरकार में विश्वास बढ़ा है। आज निकाय चुनाव का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक है।
1: आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा, उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव। एक तरफा लोगों ने वोट कमल के फूल को दिया। तीन के तीन मेयर, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है उनका चेहरे से नकाब।
0: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है, इसलिए अब जनता को उन पर विश्वास नहीं रहा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने लोगों का भाजपा को नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए आभार जताया।
2: हरियाणा के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जानदार और शानदार जीत ही हरियाणा की प्रजा को, हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। यह जीत केवल सामान्य नहीं है बल्कि अजय और अभेद्य हरियाणा के अभियान के सोपान की जीत है। मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी के नॉन स्टॉप हरियाणा के प्रतिबद्धता की जीत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है शहरों के विकास के लिए।
0: अंबाला नगर निगम के लिए महापौर पद की प्रत्याशी का चुनाव अक्षता सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर को 21,358 वोट से हराकर जीत लिया है। अक्षता सैनी को 52,794 वोट मिले जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर को 31,436 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार सोनिया चौधरी को 21,730 वोट प्राप्त हुए और 1,691 लोगों ने नोटा को वोट दिया, अर्थात किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया। वहीं 20 वार्ड के सदस्य के चुनाव में 16 में भाजपा ने, 3 पर कांग्रेस और 1 वार्ड से आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अपनी जीत पर अक्षिता सैनी ने अंबाला शहर की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे अंबाला के लोगों की जीत है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 36,252 मतों के अंतर से विजयी रहे। उन्हें कुल 78,544 वोट मिले जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 32,292 वोट प्राप्त हुए। पंचकुला नगर निगम के कुल 20 वार्डों में 17 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की जबकि 2 वार्ड में निर्दलीय और 1 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। सांपला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 686 वोट से जीत हासिल की। प्रवीण कोच को 4,391 वोट जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अंकित को 3,704 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा 6,200 वोटों से जीत गए। भाजपा के अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले जबकि बाबूलाल लांबा 3,156 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत नगर निगम में महापौर पद के उम्मीदवार राजीव जैन भी चुनाव जीत गए हैं। राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल दीवान को 23,247 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की। वहीं सोनीपत के 22 वार्डों में से 16 वार्ड में भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि 4 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और पूर्व मंत्री कविता जैन ने भाजपा की जीत का श्रेय भाजपा सरकार की नीतियों को दिया। श्री मोहन लाल बड़ौली ने कहा,
2: हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो उस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।
0: हिसार जिले की उकलाना नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने जीत दर्ज की है। रीमा सोनी ने निकिता गोयल को 2,806 वोटों के अंतर से हराया। रीमा सोनी को 7,078 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को 4,272 वोट हासिल हुए। जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने कहा कि ये जनता की जीत है,
3: ये मेरे अकेले का जीत नहीं है, ये मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिए सबके सहयोग और सबके साथ की जीत है जी। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी उकलाना की जनता का, पुलिस प्रशासन का और सभी पार्टियों का मैं दिल से धन्यवाद कर।
0: हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड और एक तरफा जीत के बाद रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह खरक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी नीतियों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली के संगठनात्मक मार्गदर्शन में भाजपा ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों के महापौर पद सहित कई वार्डों में भाजपा की शानदार जीत तथा रेवाड़ी, सांपला सहित अन्य क्षेत्रों में मिली सफलता ये साबित करती है कि हरियाणा की जनता अब परिवारवाद, झूठे वादों और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार चुकी है। जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आज घोषित 12वीं कक्षा के नतीजे में देश के 22 क्षेत्रों में पंचकुला क्षेत्र 12वें नंबर पर रहा। इस क्षेत्रीय अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पंचकुला क्षेत्र में इस बार परिणाम 85.73% रहा। उन्होंने बताया कि पंचकुला क्षेत्र में इस बार 75,248 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। पंचकुला क्षेत्र में हरियाणा के 11 जिलों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। अम्बाला पुलिस के विशेष कार्यबल ने शाहबाद लाडवा रोड स्थित चीनी मिल के सामने महादेव मोटर यार्ड में खड़ी एक गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। इस मोटर यार्ड का मालिक गांव तंगोर निवासी सूर्य प्रताप पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ के एक अधिकारी दिलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी सूर्य प्रताप को पहले गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा बारूद बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली। अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार जीते। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत। प्रस्तुत है श्री विष्णु चालीसा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईशु वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1283।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है
1: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियां और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
3: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
4: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चार निकल के भागा।
5: अब तेरी बारी है, तेरी
6: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
5: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
6: तो कहानी सुना दो भाई।
5: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
6: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
5: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
6: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
5: चलो,
6: होगा।
5: चलते
3: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
7: कौन है
6: दीदी?
7: कौन है
6: दीदी?
5: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
6: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
5: हम थोड़ा पानी पी लें।
8: हाँ हाँ,

0: नहीं था, लेकिन अम्मा आप कौन है?
1: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
2: कौन है आप?
1: नहीं समझे?
2: नहीं।
1: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: अब बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती है पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है हाँ, तो गर्मी भी तो लगनी
3: शुरू हो जाती है। हाँ
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा चलते हैं।
4: चलो
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या करा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाना,
3: दूंगी तुम्हें दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है, पसंद है, सबसे अच्छा भी है।
4: कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: piva la barca gola le lo chustilo
1: बच्चो मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
2: कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
2: लाओ अम्मा, लो गर्मी। अम्मा आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: The Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आश्रम है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं।
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या

0: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना?
1: अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली है।
2: उधर देखो
1: किधर?
2: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
1: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
2: हाँ।
1: लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
2: हाँ, हाँ, पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
1: हाँ,
2: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
1: हाँ,
2: कोई जासूस तो नहीं? वरुण दूसरे।
1: हाँ, आने दो।
3: ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं रुक जाओ, रुका।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
6: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया हैं।
6: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
6: क्या देखा तुमने?
5: सब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
6: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
6: कितने लोग रहे होंगे?
5: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
6: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
7: तो साथियों इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
8: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
7: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
8: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
7: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
8: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण

0: रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब उधर आओ।
3: जी यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
2: उधर से। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं 5:00 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना 11:00 से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, सर, सर, सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।

0: और चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
1: धीमे बोलो, धीमे
0: जी,
1: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
1: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे
0: जी,
1: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
1: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथ गोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर।
1: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
1: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे
0: धीरे धीरे
1: बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे जी सर,
1: कोई भी उठ कर नहीं चलेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपने पोजीशन ले।
0: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
0: यस सर।
1: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और

0: 629 जवान घायल हुए। देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1283। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसाना सीखती।

0: के ना खेती किसानों से थे।
1: संदीप भाई राम राम।
2: और अंजू बहन आपने भी राम राम, और खेती किसानों से थे सुनाले सारे बन भाइया ने
1: राम राम। संदीप भाई देखो, प्रबंधन की जब आप बात करें और खेती की बात करें तो प्रबंधन का खेती में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे छोटी से छोटी कृषि क्रिया हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो खेती में, कोई बड़े से बड़ा औजार हो खेती का, तो उसका प्रबंधन जब तक आप ठीक से नहीं करेंगे, किसान भाई हैं या एक आम आदमी है, अपनी जो दिनचर्या है उसका भी प्रबंध करके चल रहे हैं, तो खेती में तो प्रबंधन का इतना महत्व है, ताकि तरीके से सही समय पर बिजाई हो फसल की, सही समय पर खाद, जब जाके किसान भाई की जो माली हालत है वो उसमें थोड़ा सुधार आ है, वो अच्छी पैदावार ले है, अच्छी कीमत मिले उसने उसकी फसल की, तो फसल चाहे कोई भी हो, चाहे वो नकदी फसल हो, चाहे कोई सब्जी की फसल हो, चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे वो फ्रूट कोई फल लगा रखा है, बाग लगा रखा है किसान भाई ने, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आप कृषि क्रियाएं सही समय पर करें।
2: बिल्कुल, और देखो यदि हमने कृषि क्रियाएं सही समय पे की और अच्छा जो आप उपचारित बीज यदि हमने बोया है और समय समय पर हम उसकी देखभाल करने लग रहे हैं, विशेषज्ञों के ध्यान में जो मुख्य बीमारियां हैं उनसे हम पूछने लग रहे हैं कि कोई भी यदि बीमारी आ गई है तो हम उसका समय पर उपचार यदि समय रहते कर लें तो जो उपचार की जो लागत है वह भी हमारी कम हो जाएगी और जो फसल का उत्पादन है अंजुबन वो भी बढ़ जाएगा।
1: अब फसल प्रबंधन की आपने बात कही है कि आजकल जो है खेती के कई तरीके बदल गए हैं, नई नई पद्धतियां आ गई हैं, नई नई किस्में ईजाद करी जा रही हैं, नई नई बिजाई के तरीके भी हैं संदीप भाई, तो अगर हमने को वहां की, और आजकल जो है हम स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा सजग है हर आदमी, आम आदमी भी और किसान भाई भी,
3: बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

रंग दुनिया ते।

0: नरेंद्र भाई राम राम।
1: सुनीता बाण आपने भी राम राम और खेती किसाना सेती कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइया ने भी राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: आज सुनीता बाण जब खेती किसाना सेती की बात हो तो किसान की आमदन की बात भी आप करेंगे ताकि किसान भाई एक अच्छा मुनाफा कमा सके। आज हम देखने लग रहे हैं खेती, कई बार लोग कहते हैं हमें घाटे का सौदा है, लेकिन वह घाटे का सौदा है न सुनीता बाण, कई बार अपनी कमियां के कारण भी हुए,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अपन ने आज सिर्फ एक काम के ऊपर निर्भर न रह के खेती आधारित दूसरी चीज़ें ने भी अपनाने की जरूरत से,
0: बिल्कुल
1: ताकि खेती के माध्यम से दूसरे काम धंधे आप कर सका और वर्ष भर एक अच्छी आमदन ले सका। और आज हम खेती के एक ऐसे मॉडल की बात करेंगे जो कम जमीन में किसान की आमदनी बढ़ा सके, खर्चा घटा सके और साल भर किसान भाई ने रोजगार दे सके।
0: बिल्कुल। और इसका जो एक ही समाधान है वह है एकीकृत कृषि प्रणाली।
1: अरे भाई जब किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर ना रह के खेती के साथ दूसरे काम न जोड़ ले, उसे ने एकीकृत कृषि प्रणाली कहा।
0: जी
1: इसमें मुख्यतः फसल उत्पादन की बात है, पशुपालन है, डेयरी है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और फिर इन चीज़ों पर जुड़े काम धंधे अने अवजदा पे अपनावेंगे, और जो भी टाइम अपना बच जाएगा तो दूसरी चीज़ के ऊपर आप यूज कर सका, उसे ने एकीकृत कृषि प्रणाली कहें।
0: जी
1: तो इस खातर आज आप इन्हें बात करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देखा है खेता में आप आज बड़ी चुनौतियाँ आने लाग रही हैं। मौसम बदल जे है, कते लागत बढ़ रही है, जमीन छोटी होती जा रही है, फसल के भाव कभी ऊपर कभी नीचे कभी, लेकिन ज़्यादातर आप के कारण गेहूँ धान पर निर्भर रह के जोखिम ज़्यादा उठावा हाँ। और इसके साथ साथ दूध है, सब्जी है, अंडे है, शहद हैं, बकरी पालन अगर आप करा या आमदनी की बात करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप इन्हें परंपरागत खेती छोड़ के ने आप इन्हें दूसरे काम धंधों को भी अपनाना पड़ेगा जो खेती आधारित हैं।
0: बिल्कुल नरेंद्र भाई। देखो जो आपने बताया कृषि प्रणाली के जो फायदे आपने बता दिए उसमें जरूरत क्यों पड़ी, अरे मैं न्यू बता दूंगी कि इस तरह अपने फायदे के क्यों होंगे। सबसे पहले तो आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: एक तो ज़्यादा काम होने से कमाई तो बढ़ेगी। अपने सोचा भी एक काम करने लग रहे हैं, एक ही लीक न छोड़ के अगर दूसरी लीक पर चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा। उसी के साथ खर्च भी कम हुआ है। पशुओं का गोबर है, खेत में खाद डालेंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन आजकल तो देखा कि अपने जितनी जितनी गैस की किल्लत होने लग रही है, आजकल बहुत ज़्यादा जो है इसका उपयोग अपन करने लग रहे हैं।
1: कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अगर किसान के पास 2-3 एकड़ ज़मीन हो तो कई तरीके से काम कर सके है। मान लो किसान वहाँ पे मान लिया भाई अपने पास 2 एकड़ ज़मीन है या 3 एकड़ किसी किसी भाई पर है, तो गेहूँ धान बाजरा दाल या सब्जी 1 एकड़ में बोले, एक आधा एकड़ में पशु का हरा चारा बो सके किसान भाई, और बाकी का जो हिस्सा है 2-3 गायें भैंस पाल ले, मुर्गी पालन कर ले, मधुमक्खी के उसमें बक्से टेक दे, घर की सब्जी खातर छोटा मोटा उसे में लगा ले, तो उसने अपने रोज रोज की कमाई कर सका।
0: नरेंद्र भाई जिस तरह आपने बताई ना है, उसी तरह अपा अगर मान ले एक कोई भी जब आप काम करना शुरू करें तो छोटा स्तर पर शुरू करें।
1: बिल्कुल
0: ये नहीं है कि हमने तो रेडियो पर सुना था बोले हम यो काम कर सका। भाई देखो हम बताने तो लग रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी काम देखो हर जगह अपने प्रशिक्षण उपलब्ध है। अपनी
1: बिल्कुल
0: जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है इसमें हर चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाए, चाहे आपने पशुपालन का भी लगा लो, चाहे मुर्गी पालन का लगा लो, चाहे मछली पालन का लगा लो, बकरी पालन का है, डायरी का है, जो सब्जी उत्पादन है उसका है, या डायरी के जो प्रोडक्ट बनाने हैं आपने यानी दूध के कोई भी जो सामान बनाना है, उसने कुकर तो आपने रखना है, उन सारी चीज़ों की जो है हर एक तरह की जानकारी आपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में समय समय पर कैंप लगा के दी जाए। हर जगह मतलब हफ्ते का या 10 दिन का जो प्रशिक्षण का इनका समय है उसमें आपने हर तरह की जानकारी दी जाएगी भी कितना आपने काम शुरू करना है, शुरुआत आपने कितने तक करनी है, क्योंकि आप इसने बढ़ा सको हो। तो बिना जानकारी लिए तो हम कोई भी काम ना करा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो है वो फायदा करने के बजाय हमने घना नुकसान पहुँचा दे है। तो पहले आप पूरी जानकारी इस चीज़ की जरूर लें ताकि आप अपना रोजगार न बढ़ा के अपने दूसरे काम आमदनी ने भी बढ़ा लो। और इसमें देखो आप जब खुद अपना रोजगार बढ़ाओगे तो आपके घर के जो सदस्य हैं उन्हें भी काम मिलेगा, और अगर आपका थोड़ा सा बड़ा रोजगार है तो उसमें क्या करोगे, घर के सदस्य के साथ साथ आप दूसरे भी व्यक्ति ने
1: काम दे सको।
0: और दूसरा नरेंद्र भाई देखो अपने पास जमीन की अगर कमी है तो हम ये कर सकते हैं, अभी एक एकड़ में दो या तीन काम हम एक साथ कर सकते हैं। आप दो कनाल में वो लगा ले पहले, एक कनाल में शुरुआत एक कनाल तक करें कि बाग लगाना है तो शुरुआत में छोटे पौधे होंगे, लेकिन जैसे पौधे की बढ़वार हो जाए तो उसमें आप दो फसल ले इसको, आप उसमें आपका जो बाग तो चरण लग रहा है साथ के साथ आप उसमें नीचे फसल भी ले सके, चाहे गेहूं भी लगा सके हैं उसमें, आप दलहन भी बो सके हैं या फिर सब्जी का भी उत्पादन उसमें आप कर सके हैं। तो यो नहीं है कि कोई काम हम दूसरा नहीं कर सकते, देखो हम करना तो पड़ेगा, लेकिन एक तो आलस छोड़ना पड़ेगा और दूसरा अपना प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी किसी भी चीज की तब तक वो काम करने का अपने पास कोई फायदा को नहीं। देखा देखी अगर मैंने न्यू देख लिया कि आज नरेंद्र भाई ने यह चीज लगा ली तड़का मैं लगा ली, आज तने एक पेड़ लगाया मैं छह पेड़ लगा के खड़ी हो जाऊं, लेकिन मैंने न्यू बेराई को नहीं कि मैंने ये पेड़ लगाने क्यों करें, पहले माटी क्यों करनी चाहिए,
1: और कौन सी वैरायटी के पौधे लाए हैं, कौन सा के करे। कई बार तो भाई भाई है बाग में ला ले फिर पांच चार साल पाचे जो धोने उसका फर्क में आवे नहीं, तो अपने को बिल्कुल जो सर्टिफाइड जो भी कंपनी हुए हैं, कहने का मतलब जो नर्सरी हूं तो एक तो हमने वो पौधे लेने चाहिए। दूसरा आपने, मैं तो एक बात कहूंगी, कोई भी काम है जब तक आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब तक आप प्रशिक्षण नहीं लेवांगे ना आदमी सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि प्रशिक्षण लिया हुआ आदमी ने कभी मार को नहीं खा, उसने हर एक चीज का बारीकी

0: दे रहा है और उसको शुरुआती टाइम पे ही वैज्ञानिक ये बताऊंगे कि आपने शुरुआत में क्या करना, उसके बाद क्या करना, 2 महीने बाद क्या करना, 6 महीने बाद क्या करना, साल भर बाद से क्या करना, 2 साल बाद से क्या करना है, और उसके बाद जब आप पूरी चीज तैयार कर लो तो उसको मार्केटिंग में बेचना भी किस तरह है। तो एक काम दूसरे के काम कैसे काम आवे है, यो सारा सिस्टम हम एक दूसरे की मदद करके कर सका और ले सका है, यही इसकी असली ताकत भी है। और वे जब मान लिया एक मिनट के लिए आपने ने भाई किसी भाई ने मान लिया 2 गाय या 2 भैंस पाल ली, देखो शुरुआत में उसका गोबर इकट्ठा करया उस तक खाद बनेगी, फिर फसल का जो भूसा है उसने पशुओं का चारा बनेगा आपने जो खेत है, फिर पशु का जो मूत्र है जैविक घोल बना सके हैं किसान भाई, उसका खेत में प्रयोग कर सके, दवाई के रूप में प्रयोग कर सके हैं, फिर खेत के अंदर जो अगर फूल लागे मान लिया आपने कोई फूल बो रखे हैं उसी खेत में, जो भी चाहे आपने बागवानी के माध्यम से हो चाहे दूसरी सब्जियां लगा रखी हैं, तो उसमें आप मधुमक्खी के छत्ते रख सके हैं,
1: बिल्कुल
0: तालाब का पानी भी सिंचाई का काम आओगा, यानी कुछ भी बेकार नहीं जाओगा, बशर्ते कि आप इन्हें एक दूसरे पर निर्भर रह के एक दूसरे की सहायता लेके काम करना है, और खेती के साथ साथ 2-3 भैंस रख रखी है, सब्जी उगा रखी है, मधुमक्खी का पालन आपने कर रखा है, तो इसमें सरकार भी आपने समय समय पर चाहे अपना बागवानी विभाग है चाहे कृषि विभाग है पशुपालन विभाग है वो समय समय सब आपको उन्हें प्रशिक्षण देता है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, कुकर मिलेगी, बीज कड़ते मिलेंगे, मान लिया आप कृषि विभाग में बात करेंगे आपने बीज कौन सा लेना है, पौधे कहाँ से लेने हैं, भाई आपने पशुपालन करना तो पशुपालन के लिए कौन को किस तरह
1: कौन सा
0: साइड बनाना है, कौन सा उसके लिए हरा चारा चाहिए, कब कब समय समय पर के लेना है, और ये सारे के सारे संसाधनों के ऊपर है ना विशेषज्ञ अपने को समय समय पर चेतावे हैं, लेकिन आप वाली बात है शुरुआत आप छोटे काम तक करें छोटे हिसाब से ताकि आपको समझ में आता रहे और आगे बढ़ते रहे, अपने संसाधन के हिसाब से काम चुनना चाहिए, परिवार के सदस्य ने साथ जोड़े, जैविक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और बाजार की मांग के अनुसार ही अगर किसान भाई है ना उत्पादन लेगा तो आपका चीज भी हाथों हाथ बिक जाएगी और आपको 2 पैसे का मुनाफा रहेगा। एक फसल पर निर्भरता कम करो और कई स्रोतों पर कमाई शुरू करो, इसी चीज को हमें एकीकृत खेती कहे हैं। सुनीता बहन आपने हाँ जानकारी तो बहुत बढ़िया ले ली
1: जी।
0: लेकिन वही बात है भाई मनोरंजन का तड़का भी लगना चाहिए, और भाई तो सुनेंगे पहले रागनी।

0: नरेंद्र भाई, माणा नर भैया ने सुनी रागनी और हम बात करने लग रहे थे कि किस तरह अपना एकीकृत जो खेती है उसका अपना के कितना मुनाफा ले इसका। हाँ, उसमें ये जरूरी को नहीं कि सारे भाई ये भाई काम करेंगे, बाण भी अपना पूरा योगदान देश के हैं, जो आज का युवा है वो भी पूरा योगदान देश के है। वो किस स्त्रियाँ, देखो भाई, अपन अगर भैंस पाड़ ली या गाय पाड़ ली, उसमें क्या है कि सारे काम बिब्बे अपने स्तर पर कर सके। भाई अगर खेती करेंगे तो खेती के सिद्धि बाण भी अपना पूरा योगदान देश के हैं, पशुपालन करके। पशुपालन कर लिया तो उसमें क्या है कि दूध बेच को आप, अगर आपका दूध पूर्ण रूप से नहीं बिके है तो आप लस्सी घर यूज करके
1: लस्सी है, बना के मक्खन बना सके हैं आप, उसकी पनीर और डेयरी प्रोडक्ट बना सके
0: हैं। पनीर है हाँ। लेकिन पहले अगर बाण ये कोई भी काम शुरू करें तो पहले प्रशिक्षण जरूर ले, क्योंकि ना तो अपन है पनीर बनाना आंदा, बिना प्रशिक्षण के अपन यूँ सोचा ना, घर बनाना एक अलग चीज है, घर घर खातर बनाना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप उसको बड़े स्तर पर लेके जाना चाहो तो उसका प्रशिक्षण लेके आप उस काम ने शुरू करो। क्योंकि मशरूम उत्पादन भी बाण कर सके, इसी बात को नहीं, आपके पास जिस तरह अपने बिटोड़े हैं उनमें भी
1: छोटा सा एक कमरा हो उसमें भी आप शुरू कर सके हैं। कहने का
0: कैस कहाँ भाई, और दूसरा मुर्गी पालन भी बाण कर सके हैं। ये छोटे छोटे काम जो है वो सारी अपनी बाण कर सके हैं। इस तरह को नहीं कि हम कौन कर दिया, हमारे पास को नहीं होता, देखो करना तो पड़ेगा आपने, लेकिन छोटा सा प्रशिक्षण लेके अगर आप करोगे तो आप भाई अपने जो परिवार है उनका पूरा का पूरा सहयोग कर सके हैं। और जो युवा भाई है नरेंद्र भाई, वह न्यू कह देंगे हाँ हम ही कर सका नौकरी बिना। भाई नौकरी जरूरी को नहीं कि सब ने नौकरी मिलेगी, आज के समय में इतनी नई नई तकनीक आ रही हैं कि आप अगर आप काम करना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सको।
1: कहने का मतलब 100 रोजगार पैदा करो भाई, खुद के रोजगार पैदा करो और अच्छे ऐसे काम करो जो कृषि आधारित हो और आप अपने गांव में रह करके ही आप कर सकें, क्योंकि आज आपके हाथ में मंडी है, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप दुनिया का कोई भी किसी भी काम को आप घर बैठे है ना सीख सके हैं। आज ऑनलाइन ऐसी ऐसी चीजें हैं जो किसान भाई भी हैं या जो अपने जो कृषक भाई हैं वो कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी बेच सकें। और आज का टाइम तो है ना, देखो बाजारीकरण का टाइम है और बाजारीकरण में है ना, देखो ऑनलाइन बाजार इतना फैला हुआ है दुनिया में, तो किसान भाई भी नई नई कंपनी छोटी छोटी कंपनियां जिसमें युवा भाई भी मिलके ने शुरुआती टाइम पे 2-4 साथी मिलके करें, उसके साथ अपनी माताओं बहनों को जोड़ लें, अपने बुजुर्गों को जोड़ सके हैं। तो कहने का तात्पर्य है आप है ना रोजगार देने वाले बने, सर्जक बने, तो जब आप एक रोजगार देने वाले बनेंगे ना, आप रोजगार किसी मांगो मत, आप रोजगार देने वाले बनो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करो। और युवा साथियों में तो एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकते हैं, कहा करना भाई युवा तो एक ऐसा है भाई जो पहाड़ ने तोड़ सके है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपका जो सकारात्मक सोच है वो इन अच्छे कामों पे लगाएं, एकीकृत जो खेती की बात कर रहे हैं उसके ऊपर करें, ताकि एक आप अच्छा मुनाफा कमा के देश में एक अच्छा नाम भी कमा सको और देश में एक अच्छा योगदान देश को, और साथ साथ में एक रोजगार का आप एक बहुत बड़ा सहयोग आप देश के लिए बन सकते हैं। और आपको गांव छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आसपास ही छोटे छोटे काम धंधे करके और साथ साथ में स्वयं सहायता समूह बना करके आप इन चीजों को आगे बढ़ा सके हैं। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले भैया ने एक और रागनी के साथ करावांगे मनोरंजन।

0: ये तो सुनी सुनीता बाण, रागनी और भाइया ने देखो बड़ा आनंद ले लिया है। अरे घड़ी सारा करण लाग रही है अपने भाई नरेंद्र कौशिक ने
1: और अपने बाण सुनीता ने दे दिया सारे बाण भैया ने।
0: राम राम।
2: खेती किसाना से श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन्स इंडिया।
3: आप सुन रहे हैं
4: AIR FM हिसार
3: और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तकदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर। आज हमारे साथ हैं अमूल्या मैम। अमूल्या मैम हैं बेंगलोर की रहने वाली और इन्होंने अपना लिवर डोनेट किया था। हाय मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा एक पूरी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा हमें लेकर चलिए, बचपन से लेकर अपनी आपकी लाइफ कैसी रही।
2: मैं तो पूरे इंडिया में मतलब रह चुकी हूँ। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने पापा के बैंक का जॉब था, तो ट्रांसफर्स के कारण हम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, काफी अलग अलग प्रदेशों में रह चुके हैं। फिर आंध्रा में हम सेटल हुए, वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने अपना MBA किया। तो ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा है अभी तक का।
1: तो सीधा मैम, मैं पॉइंट पर आना चाहूंगा कि आपने अपना लिवर डोनेट किया, किसको आपने डोनेट किया, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम हुई।
2: मैंने अपना लिवर डोनेट किया अपनी तब 7 साल वाली लड़की को, जिसका नाम मायरा है। तो ये लिवर डोनेशन मायरा के लिए था। हाँ, ये मेरी बेटी है। जैसे हमारे समक्ष आया, काफी मतलब सरप्राइजिंग और आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल वैसे काफी सीधा साधा लाइफस्टाइल है, बट

0: चरण में लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा।
1: थोड़ा सा मायरा के बारे में हमें बताइए मैम कि मायरा किस तरह की बच्ची है और क्या उसका लाइफस्टाइल हुआ करता था।
0: काफी एक्टिव है मायरा वैसे, तब तो वो बैडमिंटन खेला करती थी, डांस क्लासेस जाती है, कीबोर्ड सीखती है और काफी स्कूल में अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी।
1: अमूल्य मैम, तो क्या कोई भी ऐसी चीज है मायरा की लाइफ की जो आपको ऐसा लगता हो कि ओके इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे?
0: अभी जो हमारा केस था वो काफी मतलब जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कंडीशंस में आता है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम अवॉइड कर सकते थे तो इसका मतलब एक ही उपाय होगा कि हम काफी स्क्रीनिंग और मेडिकल वैल्यूएशंस पे ज्यादा फोकस करें। जनरली बच्चों के चक्कर में हम लोग इतना मतलब जैसे अभी हम एडल्ट्स में

0: हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हम जनरली अपने बच्चों का ये सब नहीं करवाते। तो ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जहां हम शायद आज नहीं सोच रहे हैं, बट जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर में बड़े हो रहे हैं, तो एनुअल रूटीन होना चाहिए कि आप एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि ऐसी कोई चीज है जो प्रोबेबली हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं या जिसका हमने टेस्ट नहीं करवाया है, या कोई ऐसा टेस्ट है वैक्सीनेशन लेने के बाद जो अब के जमाने में करवाना चाहिए जो हमने पहले नहीं करवाया था।
1: थोड़ा सा हमें बताइए वो फेज कैसा था और क्या थॉट्स हुआ करते थे आपके, मायरा के सिम्टम्स क्या थे?
0: काफी पेनफुल और टर्मोइल वाली कंडीशन थी सागर जी। अभी मतलब आप जो कह रहे सही है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट है कि दर्शकों तक ये समझ पहुंचे, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ आपके आसपास में किसी की दशा ऐसी हो या कभी ना चाहते हुए आपके साथ घटे, तो आप इसको बेटर फेस कर पाओ। तो हम लोग जैसे जो हमारा जर्नी था वो ऑलमोस्ट 40 दिन का था। तो जिस दिन हमने मायरा को एडमिट किया था फॉर रेगुलर जॉन्डिस चेकअप, वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो इसके बाद 2-3 दिन तक मतलब जॉन्डिस की ट्रीटमेंट की तरफ से ही सब कुछ चल रहा था, बट हमको भी काफी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी डॉक्टर से कि ये हो क्या रहा है। मतलब ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि मतलब क्या, व्हाट इज नॉट वर्किंग। तो आफ्टर 2-3 डेज तब जाकर हमारी लिवर ट्रांसप्लांट टीम जो थी हॉस्पिटल की, तब जाके हमसे मिली और उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे जो लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो मायरा का लिवर नहीं कर पा रहा है। तो देयर इज एन एक्यूट लिवर फेलियर, ये टर्मिनोलॉजी थी। तो एक्यूट लिवर फेलियर होने के कारण मतलब वो जो भी खा रही है, पी रही है, वो एकदम से फ्लश आउट हो जाता था। तो इसीलिए बाहर से काफी सप्लीमेंट्स देने पड़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ आईवी। बट एकदम 4 डे के बाद से जो हमने देखा उसकी काफी कंडीशन उसकी खराब होने लगी थी। पूरा उसका बॉडी जैसे एकदम पीला पड़ गया था, आईज काफी पीली हो गई थी, काफी हाई फीवर हो गया था। तब जाके हमको जब लिवर ट्रांसप्लांट टीम मिली तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन। एंड जब हमने पहली बार बात सुनी तो हमारे मतलब हमें रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार हमने सुना था, कभी हमने फैमिली में किसी का ऐसा कोई केस ना देखा था ना सुना था आसपास में भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उसका पूरा लिवर रिप्लेस किया जाएगा एंड हम बाहर से एक फॉरेन लिवर लेकर आएंगे एंड उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी डोनर है उनके पैरामीटर्स मैच करे, वो जो लिवर हम लेकर आएंगे वो लिवर हेल्दी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सो दैट वी आर एबल टू गिव हर अ बेटर एंड अ न्यू लिवर। मतलब ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जब ट्रांसप्लांट वगैरह की बात करते हो तो इंश्योरेंस वगैरह भी एकदम हैंडी नहीं आता, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक फाइनेंशियल सरप्लस भी हो। तो तभी हमने 2-3 और ओपिनियंस भी लिए। बहुत कम विंडो था हमारे पास, बट फिर भी मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है तो उसने भी अपने हॉस्पिटल में बात की, तब जाके थोड़े डॉक्टर रिकमेंडेशंस भी आए। बट लकीली उनका जो रिकमेंडेशन था जो हमारे डॉक्टर थे वो एक ही थे, तो काफी मतलब हमें वहां से कॉन्फिडेंस मिला। तो जैसे मेरी बहन थी तो वो काफी मतलब बात कर रही थी मेडिकेशंस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ बदला जा सकता है, तो वो काफी हमारे पास एक्सटेंसिव सपोर्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब जाके हमने मतलब डोनर टेस्ट के लिए, जनरली पेरेंट्स आर द फर्स्ट चॉइस, तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं टू बी द डोनर। एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट मेरा वाज अ रेलेवेंट प्रोफाइल फॉर हर डोनर। तो आइडियली वी वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं करूंगी। जब हमें पता चला था कि डोनर बनना है तो माय हस्बैंड ने बोला था कि कब मैं जाता हूँ, सो दैट मतलब मायरा के साथ आप रहोगे पोस्ट सर्जरी टू रिकवर एंड हेल्प हर रिकवर सूनर। तो बट उनका मतलब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, तो फिर इट हैपेंड टू बी मी। तो ये थोड़ा हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, तो ये एक अलग जर्नी थी टू से कि आगे जाके अब क्या होगा। बट फिर मैंने अपने टेस्ट दिए पूरे 24 घंटे में, क्योंकि डोनर्स का भी एक एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोफाइल होता है। तो जब ओनली वो टेस्ट प्रोफाइल क्रॉस होता है और सब रिजल्ट ठीक आते हैं, तब जाके आपको फिट डोनर माना जाता है फॉर द सर्जरी। तो ये ऑलमोस्ट 5th डे की बात थी जब मेरे सारे रिजल्ट्स आए और मुझे फिट कहा गया था, वी वर ओके टू प्रोसीड विद द सर्जरी। तो तब जाके मैंने मायरा से बात की थी, तब उसको मैंने बताया था कि बेटा इस छोटा सा एक आपको इनसे मतलब छोटा सा कट होगा, वहां पे आपका जो लिवर काम नहीं कर रहा है उसको हटा के मम्मा का आपको लिवर देंगे, तो यू विल बी फाइन एंड आई विल बी फाइन। तो ऐसे करके बात हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे सर्जरी चली, जब मेरा लिवर निकाल के उसको फिर मायरा में ट्रांसप्लांट किया गया, उसकी सर्जरी कुछ 12 घंटे चली, देन दैट वाज द एंड ऑफ द प्रोसेस। बट वहां तक बात खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद पोस्ट रिकवरी इज अनदर चैलेंजिंग फेज। तो समवेयर ये हेल्प हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, तो मैं उसको गाइड भी कर पा रही थी. तो उसको पता था कि मम्मी के साथ ऐसे ही हुआ है, तो फिर वो भी काफी कॉन्फिडेंट थी जिसके वजह से वो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांग थी. तो रिकवरी में भी हमें

उतना ही जल्दी और उसके बॉडी का सपोर्ट मिला। 40 दिन लगे, वो 40 दिन हॉस्पिटल में थी। मैं ऑलमोस्ट 7 दिन के बाद मैं वापस आ गई थी, बट वो 40 दिन तक हॉस्पिटल में थी। तो धीरे धीरे फिर हमने ब्रीथिंग करना सीखा, बॉडी की इलास्टिसिटी हमने बनानी सीखी, हमने फिर वॉक करना सीखा, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा। तो ये पूरा हमारा जर्नी रहा। अब जाके हम अपने आप को नॉर्मल महसूस

0: सर्जरी होती है तो जो बॉडी का मतलब जो खोल के बंद किया जाता है उसके वजह से आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इन सब छोटी चीजों का ये काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप जब खाते हो तो हर निवाले के साथ आपका जो इंसिशन है जो स्टिचेस है वो सब दर्द करते हैं, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड कम बैक टू नॉर्मल। जब आप ब्रीथ करते हो तो ऐसे आपको लगता है कि आप शायद सिर्फ 10% ऑफ द लंग कैपेसिटी के साथ ब्रीथ कर रहे हो। मतलब हम बात भी जब करते थे तो 3-4 शब्द के आगे हम बोल नहीं पाते थे, हमको ऑलमोस्ट एक महीना लगा कि हम मतलब नॉर्मल ब्रीथ करके एक सेंटेंस बोल पाए। तो फिर हम जब वॉक करते थे तब भी यही होता था कि ब्रीथिंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड हो जाती थी, तो 2-3 स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे, फिर 2-3 स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे। मतलब दिस इज ऑल पोस्ट सर्जरी इम्प्लीकेशंस की आपकी बॉडी काफी वीक हो जाती है, बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, एंड जस्ट बिकॉज सब कुछ खोल के फिर बंद किया जाता है तो द ऑर्गन्स ऑल्सो टेक अ वाइल टू गेट एडजस्टेड टू द न्यू रूटीन। तो इसीलिए आपका जो प्री सर्जरी बॉडी है उसकी फिटनेस काफी हेल्प करती है टू रिकवर लेटर आफ्टर दिस फेज।
1: आपके जो थॉट्स थे डोनेट करने के पहले और आफ्टर डोनेशन की जो आपकी लाइफ है, क्या कुछ आपने अलग पाया? हाउ डू यू फील अबाउट दिस कॉज नाउ? प्लीज वो थोड़ा सा हमें एलाबोरेट करके बताइए।
0: ड्यूरिंग द सर्जरी तो ऐसे था कि मतलब जो भी बन पाए हम करेंगे टू इंश्योर कि हम मायरा को एक दूसरा जन्म दे सके, और उसका उसकी जो सर्जरी हुई थी वो उसके बर्थडे के दिन ही हुई थी, तो मैं तो उसको दूसरा जन्म ही कहूंगी। मैं तो सबको कहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को 2 बार जन्म दिया है, तो मैं उसमें काफी अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। बट तब डॉक्टर्स काफी आपको एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मैं वो काफी ट्रांसपेरेंटली भी बताऊंगी आपको। तो ऐसे होता है कि आफ्टर ऑर्गन हैज बीन ट्रांसप्लांटेड, रिसिपिएंट के लिए इम्यूनो सप्रेशन स्टार्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गन उनको नया मिला है वो उनकी बॉडी खुद रिजेक्ट ना करे। तो ये ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपको हर 12 घंटे पे लेने होती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम की जाती है ताकि आपकी की बॉडी आपके न्यू ऑर्गन से फाइट ना कर पाए। तो जब आप इम्यूनिटी लो करते हो तो उसकी वजह से जो भी मतलब बाकी के वायरस बैक्टीरिया है वो काफी हद तक बॉडी को अटैक करने लगते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे आप इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको इम्पैक्ट करेगा, तो आपको इम्यूनिटी कम ही रखनी पड़ेगी। बट अगर आप कम रखोगे तो आपके बाकी के इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें जो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि आप ऐसे सराउंडिंग्स में रहो जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, आप बाहर जा रहे हो तो आप मास्क पहन के चलो, आप अपने हैंड्स को हमेशा क्लीन रखो, मल्टीपल टाइम्स वॉश करो, सैनिटाइज करो। अगर आप बच्चे के एज ग्रुप में हो तो आप ऐसा कोई स्कूल ढूंढो जहाँ पे आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। तो ये सारे जो हमने कोविड के टाइम पे थोड़े प्रिकॉशंस देखे थे ये बिकम अ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ। तो मतलब काफी लंबा प्रोसेस रहा है, पूरे 12 महीने की जर्नी।

0: मेरा ऑफिस वाइज भी मैंने ऐसे रोल्स लिए हैं जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ कि अगर मेरा को जरूरत पड़े तो आई एम अराउंड, बट काफी नॉर्मल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ अवर फूड, अवर सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल्स. ये तो मैं सबके लिए कहूंगी कि वन, आप भले लिविंग डोनर हो या ना हो, बट प्लीज साइन अप टू बी अ डोनर. आप जब मतलब अगर आप इस दुनिया में रहे ना रहे, बट आप कितने काफी लोगों को आप और जिंदगी दे सकते हैं. ये तो मैंने अपने नाना जी के टाइम से देखा है. वो खुद डॉक्टर थे तो उन्होंने मतलब इवन बिफोर ही वाज क्लोज टू हिज डेथ उन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर दिया था कि मेरे आंखों को डोनेट किया जाएगा, स्किन को डोनेट किया जाएगा एंड एनी ऑर्गन विच इज इन वर्किंग कंडीशन को डोनेट किया जाए. तो उनकी तो मतलब तभी से इच्छा थी. मैं तो एंकरेज करूंगी सबको कि आप वन एज एन ऑर्गन डोनर अपने आपको रजिस्टर करें कि कभी कोई नीड पड़े तो देयर इज समबडी हु कैन रीच आउट टू यू.
1: दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये शो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग रहा होगा. नाउ विद दिस नोट हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे. अमूल्या मैम, इट मींस अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट.
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में. दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर संपर्क कर सकते हैं. अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन्स इंडिया। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम महारे गांव के तहत रागनिया और कुछ संदेश।

है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

दोनों डबपड़ काला खड़िए केवाड़ी दड़िए शीशम के कुंदी लगड़ी ना ताला फर्श गिलारी संगमरमर के दिखे ब्योत निराला सोने का पानी ओया छाट।

卡咱们比家母多家दस कोठड़ी बनी आनी स्यानी बोल गुजम खो जा पलंग नवाई दक्षरी कमरिया में साहे कितना है कौन पास हो जा एक कभी

तेरे मुर्गाई एक आधी जगे कंठारे पे हरे हरे रंग की काई गुरु मान संगी बता गए जो धर्म करम

0: फिर सारी धरती देख गई पता के इसे पति नचाते
1: यो ईश्वर सबके

श्रोताओं, आप सबका प्यार, आपका इंतजार और ये है आपका ख्वाब आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशी खिदमत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी मेजबान सारिका शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा मोहब्बत से भरा नमस्कार।

ये आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर? ये आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर? कभी मेरी आंखों से देखो कितने लाजवाब हो तुम।

जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर। हाँ मुझे जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, तेरे एहसासों में जो सुकून है वो नींद में कहाँ।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

क्या बात है, कल भी नंबर वन था आकाशवाणी और आज भी बॉस है। आकाशवाणी के 90 साल सभी को मुबारक। श्रोताओं, कुछ पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों है? जो लकीरों में नहीं होता, किस्मत उनसे मिलवाती क्यों है?

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

शिकायत और दुआ में जब एक ही शख्स हो। श्रोताओं, वो कहते हैं कि शिकायत और दुआ में जब एक ही शख्स हो तो समझ लो इश्क करने की अदा आ गई तुम्हें।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी के 90 साल आपको, हमको, सबको मुबारक। कुछ तो खास है जो तुम्हें मुझसे जोड़े रखता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए अपनी मेजबान सारिका शर्मा को। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से किया गया।

FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से। हरियाणा में गलियारे के विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों के लिए कई प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। और ये प्रमुख योजनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये परियोजना पलवल को सोहना, मानेसर और खरखोदा के रास्ते सोनीपत से जोड़ती है। यह दोहरी रेलवे लाइन यात्री और माल ढुलाई दोनों के लिए है, जो औद्योगिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दूसरी परियोजना है गुरुग्राम झज्जर सिक्स लेन गलियारा। हरियाणा सरकार गुरुग्राम और झज्जर के बीच एक नया 33 किलोमीटर लंबा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे विकसित कर रही है। अंबाला कोटपुतली गलियारा, यह एक 304 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। गुरुग्राम रेवाड़ी नारनोल सीमा गलियारा, यह 132 किलोमीटर का नया आर्थिक गलियारा है। औद्योगिक गलियारे, गुरुग्राम में 1800 एकड़ में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इसके अलावा नारनोल में 886 एकड़ में एकीकृत बहु मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। वैश्विक शहर गुरुग्राम, मानेसर के पास सेक्टर 36 बी में लगभग 1002 एकड़ में एक वैश्विक शहर का विकास किया जा रहा है। कुछ अन्य सरकारी परियोजना भी हैं जो इस प्रकार हैं, भूमि सुधार और रोजगार। अगर हरियाणा में बात करते हैं भूमि सुधार और रोजगार के बारे में, तो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए 1800 एकड़ में नए औद्योगिक गलियारे के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक टाउनशिप, अब इसके बारे में जो कहना है सरकार का कि सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास होगा। तो ये थी हरियाणा के गलियारे से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां। अब सुनते हैं बाली शर्मा और साथियों की आवाजों में ये रागनी।

aqui, mãe.

पड़े मुड़ तुड़के है काया करती ढीली, देखे होठों पे पन्ना की लाली, डोले बोल रसीली, संतर मासा चेर आदम के चमके आँख कटीली, इस रूप गढ़न की अकल गड़िये ते रूप गढ़।

இருக்கி இன்னொர மக்களாய் மூடேகி சோ நீ மன்னா பிரேமும் பொரு

बनाई हो से जती सती के दिल के अंदर खुद चतुराई हो से के गुरु मान संगी झूठे रंगी कमर सनाई हो से याद करन की खंद कभी ने या गणत सफाई हो से कहन लग

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाली शर्मा और साथियों की आवाज़ों में रागनी, और कार्यक्रम था हरियाणा के गलियारे से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। श्रोताओं, अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती। प्रतीक्षा के बस चंद पल और हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय

0: मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
1: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
9: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
10: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
8: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
11: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के रिजर्व से।
12: इंडिया हैज नियरली 400 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व। बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दिस कोल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड देन यूज दैट गैस इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर्स। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एलएनजी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। एन आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज and projects will be set up to gasify 75 million tons of coal.
13: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
8: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said, as India's first semi-high-speed rail project, the project will serve as a pioneer project, acting as a reference model for the phased expansion of semi-high-speed rail across the country. The project will be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the transformation of Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport into a world-class facility. The phased development is envisaged to reach the ultimate capacity of handling 30 million passengers annually, positioning it as a key airport in central India. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET-UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram and one from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group, Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. He also encouraged people to use public transport. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. She has urged Delhi residents to adopt carpooling and make greater use of buses and metro services instead of private vehicles. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport, buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Amid the ongoing conflict in West Asia, the Prime Minister on Sunday urged people to reduce petrol and diesel consumption and use public transport to conserve foreign exchange. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.uv.in and download News on AIR app. Welcome back. You are with us on the news at 9. The government of West Bengal has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, animal products and other essential products. Earlier, restrictions were placed by the erstwhile TMC government. It is learnt that huge losses were incurred by the potato farmers and other entities by this restriction. Before coming to power, the BJP had assured the farmers on lifting of the restriction. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the Central Bureau of Investigation. Today, Chief Minister Shubhendu Adhikari alleged that the former TMC government had not taken any step in these cases to safeguard corrupt officers. He informed the media that the current government of West Bengal would adopt zero tolerance to institutional corruption. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Dr. Sarma took oath as the Assam Chief Minister for his second consecutive term yesterday. Chief Minister Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He added that the UCC bill will be tabled on the concluding day of the session.
6: Today, Assam Cabinet should pass Uniform Civil Code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of Uniform Civil Code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of Uniform Civil Code. The UCC bill will be laid before the Assembly on 26th of May.
8: Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
14: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Maldivian counterpart Irutisha Madam in New Delhi today on her first official visit to India. In a social media post, Dr. Jaishankar said during their meeting they underlined the neighbourhood first policy and reviewed bilateral cooperation. Dr. Jaishankar reiterated India's commitment to the Maldives' progress and development. Dr. Jaishankar also met his Brazilian counterpart Mauro Vieira and exchanged views on bilateral, regional and global issues. The External Affairs Minister said India values Brazil's support and perspectives on India BRICS chairship. Senior officials from Iran, Kazakhstan, Nigeria and Uzbekistan have arrived in New Delhi to attend the two-day BRICS foreign ministers meeting beginning tomorrow. US President Donald Trump arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. During their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues, including the war involving Iran, U.S. arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China, underscoring the importance of economic and technological issues in bilateral relations. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championships in Gandhinagar today. Gyaneshwari won a silver in the snatch section in the 53-kilogram category and then an overall bronze medal in the event with a combined lift of 194 kilograms. In Thailand Open Badminton, star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, the two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Tung Siu Tong of Chinese Taipei 21-9, 21-12. She will take on Amalie Schultz of Denmark in the round of 16 tomorrow. Young Devika Sehag outclassed world number 26, Natsuki Nedera of Japan. She will meet Thai player Pichamon Opatniput. In another match, Malvika Bansod beat Wen Yu Tsang of Canada. She will meet Chan Yufei of China. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over West Madhya Pradesh and West Rajasthan for the next 2 days. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are expected to reel under heat wave conditions tomorrow. The weather agency also predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet increases minimum support prices, MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
15: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद।

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं थे।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

0: गए।
1: अबू धाबी से भारत आकर बेनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बेनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बेनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थी।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुँचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुँच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन एआर रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एआर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। एआर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

0: दीनदयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है।
1: भाई तेरा हुल सकता है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा।

दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

विनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने चाहने वाले

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

आपका प्यार, आपका इंतजार और ये है आप सभी का ख्वाब आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सबके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने और आज इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी मेजबान सारिका शर्मा आप सबके साथ। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा सलाम।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। और आपके व्हाट्सएप संदेशों को देखकर मुझे समझ आ रहा है कि आप कितनी शिद्दत से कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। श्रोताओं, ये जिंदगी आपकी अपनी है और आपको ये जिंदगी उस खुदा ने अता की है। आप जो कुछ करेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, जो करेंगे, उसका असर आपके अपने जीवन, अपने भविष्य पर, आपकी अपनी जिंदगी पर और आपके अपनों पर जरूर पड़ेगा। हम सोचते हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे, पर दोस्तों, उसके लिए धैर्य, शांति, सब्र और उसके बाद मेहनत और ईमानदारी उसकी जरूरत है। और इतनी प्यारी सी, खूबसूरत सी जिंदगी जब हमारे पास है, रोशन जहां को देखने के लिए इतनी कीमती आंखें हैं और ये दिल है जो धड़कता है हर पल और गवाही देता है कि हम सांस ले रहे हैं, हम सोचते हैं, हमारे पास दिमाग भी है और हमारे पास जज्बात भी हैं, भावनाएं हैं जो हर किसी के बारे में सोचती हैं। और जहां तक आपकी अपनी बात है दोस्तों, तो अपने वजूद का सम्मान हमें सबसे पहले खुद करना चाहिए। दूसरा आपकी कद्र करे, इसका इंतजार आप क्यों करें? आप खुद अपने कद्रदान बन जाइए, फिर देखिए किसी के रवैये से ना आपको फर्क पड़ेगा ना आप उदास होंगे। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलकें झुकी और उठने लगी तो होले से उनका सलाम आया। कुछ इसी तरह की जिंदगी होनी चाहिए दोस्तों। और अब आपकी फरमाइशों के उस सिलसिले को शुरू करते हैं जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत कालेगांव से, श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख। हमारे अगले श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और हैं प्रांजल राय। पटियाली रोड गंज जुंडवारा से हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, अहल हुसैन, अरहान और इनके परिवार के सदस्य। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, सितारा बेगम, मोहम्मद इकबाल फरीदी, नसरीन बेगम, रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदा रानी और हैं हिना कौसर। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार। रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। खलीफों की बावड़ी से हैं हमारे श्रोता खुदा बख्श खलीफा। और ये व्हाट्सएप संदेश आया है आदर्श नगर मलोड पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव सायना और निवान शर्मा। समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी आरजू, पप्पू हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुशदिल परिवार। गांव जाखोद राजस्थान से हमारे श्रोता हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और हैं कुमारी पूजा खटक। और ये हमारे अगले श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय और पीबी कुलथे। पांडरकवाड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से हैं अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। बल्हार शहर से हैं सूरज और प्राची और एकलव्य लौंडे। और ये मिला है हमें संदेश, भेजने वाले हैं सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर यूपी से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप सबके लिए दिल को खुश करने वाला और जिंदगी को रोशन करने वाला ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अपने आप की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी आंखों में अपने लिए सम्मान देखेंगे तो ऐसा कुछ काम भी कर गुजरने की तमन्ना रखेंगे कि दुनिया देखती रह जाए और दुनिया की नजरों में भी हमारे लिए वही जज्बात आए जो हम देखना चाहते हैं उनकी आंखों में। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो, इतने भी गैर नहीं हो तुम कि उन्हें बिल्कुल अपने नहीं लगते हो, क्योंकि किसी को अपना बनाने के लिए उन्हें दिल से अपनाना पड़ता है। और यही वजह है कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और प्यारे दोस्तों, जिंदगी की हर सुबह उम्मीद की किरण लेकर आती है, बस आपको उन किरणों को समेटना तो है, फिर देखिएगा हर शाम खुशी का पैगाम लेकर जाएगी। और ये हमारे श्रोता हैं जो इस इंतजार में हैं कि अब इनका नाम कब आएगा। ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ अनवर, लुबनान सारी आले अंसारी, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा, अस्तुपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परमीन। और ये हमारे श्रोता हैं किशन लाल छिम्बी, सतबीर चिराग और इनका परिवार, और ये हैं बरवाला से। और हमारे अगले श्रोता हैं गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रियांश और पूरा लोखंडे परिवार। जलालाबाद वेस्ट से हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी खेड़ा, शालिनी, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। और ये हैं सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित, अंकित, सुशीला अग्रवाल कुरुक्षेत्र से, मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजस, शेफाली, शेफी, डेविस। हमारे अगले श्रोता हैं संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा गायकवाड़, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और हैं शशांक बागमारे। और श्रोता, ये हमें अगला मिला है व्हाट्सएप संदेश, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला भिवानी हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण, ममता, कमल कुमार बंसल, गर्विश और तमन्ना बंसल। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनका परिवार। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। और हमारे अगले श्रोता हैं गांव पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश प्रयाण और शिवम वर्मा। गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम और हैं अदीब हसन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मथुरा से हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा, हिना, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकैस्टो, रोजी डिकैस्टो, पर्ल डिकैस्टो और विलिस डिकैस्टो। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनका पूरा परिवार। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। हमारे प्यारे श्रोताओं को पेश खिदमत है ये प्यारा सा गीत, अपने तो अपने होते हैं और ये बात 100% सच है।

जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे हिसाब लिखेंगे, कुछ बदले अपनों के लहजे, कुछ अपने टूटे ख्वाब लिखेंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी तो अपनी है, आपकी अपनी है। किसी से उम्मीद रखना, किसी की उम्मीद करना बेमानी है। किसी के सहारे की आस रखना आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जब ये उम्मीद ये आस टूटती है तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो पल, वो समा, वो दिन, वो दोस्त जो अब आ नहीं सकते, उनसे करीबी समझना एक झूठा सा ख्वाब है। इन ख्वाबों में सच्चाई बहुत कम होती है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा प्यार भी चांद जैसा है, दिन ब दिन बदलता जा रहा है। कभी कभी हम एक दूसरे से भी ये कह देते हैं। और अब हम लेते हैं हमारे अगले श्रोताओं का नाम। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से है मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मोंगी सापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और ये हमारे श्रोता हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। झारखंड सुपाही शाही गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली कुमारी और देवेन जी। और ये संदेश हमें भेजा है एमएलबी रोड ग्वालियर से भेजने वाले हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लग्या लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष अनुज, विशु छोटू और एस के पप्पी खुराना। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और हैं मेहराज जहां। पद्मा टाकिस नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और ये हमारे अगले श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। और ये हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। गंज डुंडवारा यूपी से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नास, नवाजिस शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव। हमारे अगले श्रोता हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और हैं इनके साथ खुशी गोस्वामी। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासिन हाशमी और शमसुल कमर राही। श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा नगमा बस आपके लिए।

दोस्तों कहते हैं कि दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर फिदा है। क्या बात है, इसीलिए दोस्तों समय रहते अपने आप की अपने वजूद की कद्र जरूर कीजिए, क्योंकि समय वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता, किसी के लिए रुकता नहीं है। कहते हैं ना कि समय आपके साथ है तो बेरहम भी बहुत है। बस जो वक्त जितना मिलता है, जब भी मिलता है, तो वही काम कीजिए, जरूर कीजिए जिसे करने के लिए आप बेकरार हैं। वो बात जरूर कहिए जिसे कहने के लिए आप बार बार कोशिश करते हैं पर कह नहीं पाते। कह दीजिए, ना जाने फिर कभी एहसासों का मौका आए। और अब हम भी इंतजार नहीं करवाते हैं अपने अगले श्रोताओं को, और ये हैं हरमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। और ये हमारे श्रोता हैं गांव शेड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला और लीलाधर शर्मा। एटा उत्तर प्रदेश से हैं एम फारूक, शेख शमा, परवीन, साइमा, सरफराज, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। छत्रपति संभाजी नगर, सूर्यवाड़ी, औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन और ओवी। और ये हमारे श्रोता हैं पटेल नगर, मलोड, पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। मोहल्ला फतेहगढ़, लुधियाना, पंजाब से हैं विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोक, सुशीला, बीके, कैलाश, अनीता, ममतापुरी, मेघापुरी और इनका परिवार। यादव मोहल्ला सनावद, मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकर, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकर। कैरू पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप अनहद और गुरुशब्द। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिख भेजा है अपनी फरमाइश, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और इनका परिवार। और आप सबकी पसंद पर पेश है ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। जी हाँ, इसे मोहब्बत कहते हैं। जब हमें किसी की बार बार याद आती है या हर पल वो हमारे दिल में, हमारे आंखों में, हर जगह, हर शख्स में समाए होते हैं। कहते हैं मोहब्बत के बिना जिंदगी बेरंग है, वीरान है। ये मोहब्बत का सरूर होता है जो किसी आम से शख्स को भी बड़ा खास बना देता है किसी और के लिए। लेकिन इसी मोहब्बत में जब दरार आती है तो किसी खास को खाक भी बना देती है। इसीलिए सच्चा प्यार विश्वास को जिंदा रखता है, उम्मीद को मरने नहीं देता। और फिर इसीलिए तो जिंदगी में हर अच्छे काम के पीछे एक अच्छी और सच्ची उम्मीद का होना बहुत जरूरी है, और वो उम्मीद हर इंसान को अपने आप से भी जरूर रखनी चाहिए। अब हमारे दोस्तों को भी उम्मीद है कि हम उनका नाम लेंगे, और बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो ये सोचते हैं या थोड़ी देर के लिए यहाँ वहां हो जाते हैं, उनका नाम हम ले चुके होते हैं, उन्हें लगता है नहीं लिया, तो अब उसमें हम क्या करें, नाम को रिपीट करते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता। और ये हमारे श्रोता है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। और ये हमें मिला है गांव जेवरा हिसार से, संदेश नाम है वीरेंद्र भयान, शबशेर सुरेंद्र और मनोज भयान। और हमारे अगले श्रोता है गांव व डाकघर निम्नाबाई, जिला जींद हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। और अगला संदेश हमें मिला है, और ये हमारे श्रोता हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित और बेबी गर्वी चौहान। जबानिया गाजीपुर यूपी से हैं, सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, डिंपल और एसपी जायसवाल। देवरी भाटापारा से हैं केआर साहू, आकाश साहू।

कमलेश्वर गनूलाल रजक। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। सिरसिला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, सोमल, कार्तिक, प्राची, सचिन चौहान और इनका परिवार। सब्जी मंडी बुल्डाना से हैं शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा और अनम। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, आकृति राहुल, ज्योति राहुल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार जायजान, छोटी गुड़िया नूर, नमन और गुरकिरत। मजनू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। और यह हमारे श्रोता है जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना। और ये हैं पिंगवाला चौगोरिया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत मक्कड़ और कमल सहनी। खमरिया छत्तीसगढ़ से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस कुमार और प्रतीक कुमार। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

भी सजे हैं, छंदों के सुंदर फूल खिले हैं, मुखरित हो गए सरगम के स्वर, मन बीना के मधुर तार बजे हैं।

कभी कभी डरे ये मन कि तुम कहीं ना हो, नैनों का एक सपना तुम ही कहो न चुप रहो, कि तुम सच हो या कल्पना की कोई छलना।

झलक उलक उलक गया मन मेरा झूम के, आए मुझे तुम ही नजर इधर उधर जिधर भी देखो।

दोस्तों, जब हम अपनी खुद की कदर करना सीख जाते हैं तो फिर हमें जिंदगी से भी कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि जब हम अपने आप को ही इज्जत नहीं देते हैं तो फिर किसी और की इज्जत क्या करेंगे, या जिंदगी ने, उस भगवान ने हमें जो दिया उसकी इज्जत क्या करेंगे, क्योंकि मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी से, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल हो ना सका। और अब हमारे अगले श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं गांव डंडी, तहसील भद्रवाहा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार शेख, जफर हसन, सुदर्शन और नरेश मस्तानपुरा, पूर्णा जंक्शन से हैं अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी। डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली बेबी पूजा तामुरिया और हैं प्रभा देवी। और यह है व्हाट्सएप संदेश हमारे श्रोता हैं श्रीडी कोपर गांव से सुरेश मालोदे, वर्षा श्रद्धा मानसी, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप अशोक शेरी वर्डनेर, अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आदिनाथ बाग, भारती गौरी, ओम कुमार सुरलकर। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद और कुमार गौरव, भिलाई से मोहम्मद हाशिम और नसरीन परवीन। और ये हमारे श्रोता हैं नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और बेबी वामिका। दोहा कतर से हैं शेख जियाउर रहमान, जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला, दीपक,

श्याम कुमार अनुश्री और आसमा श्याम कुमार। और ये हमारे अगले श्रोता हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गांव हिप्पर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सारा बानु शेख, बाबा शेख सिमर और करिश्मा शेख, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल, सांगली जिले के जतशहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख। और ये हमारे श्रोता हैं बुलढाणा वंडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा और सुरीत, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोना मदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, असमा खातून अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयानंद और परमानंद आर्या। और ये हमारे श्रोता हैं दीवानिया रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से बिपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। आप सबके लिए पेशे खिदमत है फिल्म मौसम से ये गीत दिल ढूंढता है।

बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनकी जिंदगी में अहम थे, तो क्यों दूसरे की जिंदगी में अहम होने से पहले अपने आप को अहमियत देना सीखे। और ये कहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है कि कितना खूबसूरत है उसका मेरा रिश्ता, ना उसने कभी बांधा ना हमने कभी छोड़ा। और फिर ये तो सच है दोस्तों कि जान जाती थी जिसके जाने से, मैंने उसका जाना भी देखा है। असलियत तो यही है जिंदगी की। और हम क्या कहें, लेते हैं अगले श्रोताओं के नाम। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां मास्टर अजहर खान, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज मोहम्मद, और पूरा समरीन परवीन माहिरा नूर। और ये हमारे श्रोता हैं डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव आरव और अर्पिता, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहेरेकर। और ये हमारे श्रोता हैं गांव पंजोनिया, जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चंसोलिया, और कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। उमर खेर से हैं सिराज खान और मिराज खान, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौर, अविशान कार्तिक सैनी, जामोद से ठाकुर भवानी सिंह बैंस, रिया रोहन अंगद ठाकुर, अमोल मानकर और इनका परिवार।

श्रोता, आप सुन रहे थे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, आपकी मेजबान सारिका शर्मा के साथ। इंतजार अश्क में बेचैनी का आलम मत पूछो, हर आहट पर लगता है वो आए हैं। लेकिन अब जाने का समय हो चला है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, अब आपको समाचारों के लिए लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurgaon, and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry into the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy's size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyid Abbas Araghchi, arrived in New Delhi this evening to participate in the meeting of the foreign ministers of the BRICS member country. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 71-1 in 7.1 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field after rain and a wet outfield delayed the start of the match. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze at the Asian Senior Championship in Gandhinagar today. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें